मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की छठी तिथि के तदनुसार 27 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:53 और 40 सेकंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। 5:57 हो चुके हैं। आइए आपको आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में जानकारी दे दें। ठीक 6 बजे आप सुन सकेंगे हिंदी में समाचार। 6:05 का समय रहेगा कार्यक्रम सुप्रभात का। आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 7:05 का समय रहेगा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR का। ठीक 8 बजे जारी रहेगा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। 9 बजे आप सुन सकेंगे कार्यक्रम दिल के तराने, गाने नए पुराने।

0: Good morning, Itu Agashwani Kohima. Pujur laga khobor puriya siyim kongnongla. Union Home Minister Amit Shah ba jakali koisi ki sarkar ba anti-drone system do 6 mahina bhitor di install korigina. Drones ba narcotics aro hatiyar smuggle koriya khan rokhai dibole ase. BSF personnel ko di Sanchi border outpost Rajasthan laga Bikaner district ti kotha koriya samoy Home Minister ba koisi ki simona khandi dhamki shuru kori thakia do sai rakhi boli aro desh te Indonesia dhamki lokoti satya bhitor elements lokoti eki dhyan rakhi boli dorkar ase.
1: और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए। और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षित कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: श्री शर्मा कैसे के इतुदी शामिल हुआ खान खिलाफ करा लीगल एक्शन लवले लगे तबरा कैसे कि ड्रोन्स कांडो इंडियन टेरिटरी लैंड कुरिया कारणे लोकल पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मिलागिना इंटरनेशनल कंसाइनमेंट पा खान पहचान कुरिगिना और धमकी खान हटाई दिबली लगे एकता डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स मीटिंग दो स्टॉप डायरिया कैंपेन 2026 और रूटीन इम्यूनाइजेशन दी डीसी कॉन्फ्रेंस हो को हमारी जागले डिप्टी कमिश्नर बी हिनोक पोचम लगा चेयरमैनशिप नीचे दे रखी से डीसी ब्रा डायरिया और हेल्थ केयर आदत कांडे भय और गलती जानकारी था कि और बिशिद दूर इलाका जो मेडिकल सर्विसेस लगा जाननी और एक्सेस कमटी था कि इतनी सामना कर दरकार जाना से डीपीओ रिप्रोडक्टिव मेटर्नल न्यूबॉर्न Child Adolescent Health Plus Nutrition, Dr. Krivilho Nakrobra JNIDC, Intensified Diarrhea Control Fortnight Campaign to June 16 by July 31st tak rakhi kena bacha khan. Umar, Pangsal aru huru khan, caregivers aru vulnerable communities khan target kori wala se. Darba, ORS aru zinc pra, bacha khan diarrhea pra moria rok hai di wali dorka JNIC aru ASHAs, CHOs aru ENMs pra. Janani dia, hat sapa kori wali dikhai dia aru ORS zinc di du district di bhag kori di wala se. Dr. Nakrobra kwese ki Kohima district pra 2025-26 samay. Dorkar immunization targets di 100% over coverage do measles rubella vaccination aro full immunization coverage de kamyab kuri de se state de births and deaths laga 100% registration de bodli kuri thaki a hisab is of birth and death registration sri nagaland online system bra june 1 tarikh pra jari rakhibela se state economics and statistics department ba janai de se sob birth and death certificates kan 1st June 2026 agide manually issue kuria khanto sob official kam karni valid hobo aro digitization karni noton certificates loboli nalage department ra koise ke state manually issue kuria certificates laga digitization to state jari rakhibo aro online system ra registration deri kori dia do agide janai dia procedures kan follow koribole ase manukhan lokoti pasoti sob registrations kan to online registration ra koriboli sala dise एक ही समय डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार्स और रजिस्ट्रेशन यूनिट्स लगते इतु बदली कुरिया समय मानुखान लगते दरकार मदद दिबली जाना दिसे क्लारिफिकेशन नहली मदद कारण निजर निजर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार्स नहली रजिस्ट्रेशन यूनिट्स लगते कन्टेक्ट करिबली पारिबो आरो अफ्रिकन स्वाइन फीवर ESF to Matsushima, Tseminu or Peg districts to confirm Korea Basudi Ito Rukaidia Gadam Kano Taidi say viral bimar bra Gauri Lukodi effect Korea bra district administrations bra effect hua Ilaka Kando infected or surveillance zone hisabi janadi say Matsushima do ESF Kano Ward 90 Gauri bra sample Jama Korea di positive for Ikina authorities bra outbreak epicenter bra 8 kilometer to infected zone hisab or 10 kilometer surveillance zone janadi say Gauri Gauri Mangso aru Ido products laga transport Korea, Maria, Bikri aru Bhag Korea Kanopur, Mana Lagadi se. Germany Bossidi ESF cases confirm Kore, Kisiman Gauri Muria laga Kobor Korea Pasod, Germanyoti Itunishina, Bajab Gadam Kanot Haidi se. Peg district, Koza Bostido, infected zone is of Janadi se aru Aspas Bosti Kando, surveillance Nichidi Rakidi se. District administration ba Gauri Maria, import, export aru Gauri products kan, Anya aru Lo लैजा खांडू दूसरा ऑर्डर्स नादिया दक मानक रेडी से डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज पर किसान और मानु खान लगोदी गावरी खान अचानक बीमार हुआन होली मोरिया खांडो सबसे ओसर वेटनरी ऑफिसर होली डिपार्टमेंट लगोदी लगी लगी रिपोर्ट करी अनुरोध कर कंटेनमेंट रेगुलेशंस न मानिया खान खिलाफ कारा एक्शन लगोली खबरदार जाना ইতিলকত আজি ফুজুর লাগা খবর ইমান দিছে স্কুরে আছে হুনি থাকিবি সাম 7:10 মিনিটে নাগামিস খবর আনি দিবলে আছে।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। CBSE ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन अफवाहों को खारिज किया जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई थी। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नवलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
4: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
3: इस समिति के कार्यों के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।

0: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पैनी वोंग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा, जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर कार्य हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता पर श्री गोयल ने कहा कि भारत अगले 3 दशकों तक विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में SIR प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। एक रिपोर्ट।
2: याचिकाओं में SIR प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया था कि SIR प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326, जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्वाचन आयोग को दी गई शक्तियों के दायरे से बाहर थी। याचिकाकर्ताओं की ये भी दलील थी कि SIR प्रक्रिया ने बड़ी संख्या में गरीब और विस्थापित लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR प्रक्रिया से प्रभावित मतदाताओं के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देने और कठिनाई को कम करने के लिए अंतरिम निर्देश जारी किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने 1983 में बिहार में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा बरकरार रखते हुए कहा है कि इस घटना की क्रूरता न्यायिक अंतरात्मा को झकझोर देती है। न्यायमूर्ति संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कल कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय दोनों ने सही कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह की सहानुभूति या नरमी की गुंजाइश नहीं है। न्यायालय ने कहा कि घटना मार्च 1983 में मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव में हुई थी, जहां कम से कम 58 लोगों की भीड़ ने चंद्रशेखर चौधरी के घर में आग लगा दी, जिसके बाद 5 लोगों की बेरहमी से हत्या की गई और कई लोग घायल हो गए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने सोशल मीडिया पर किए गए इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। बोर्ड ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के वास्तविक मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पोर्टल पूरी तरह से एक अलग URL पर काम करता है। एक रिपोर्ट।
3: CBSE बोर्ड ने कहा है कि cbse.onmarks.co.in केवल एक टेस्टिंग साइट है, जिसमें सैंपल डाटा होता है, जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से आंतरिक टेस्टिंग और समीक्षा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसमें परीक्षा से संबंधित कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं होती है। बोर्ड ने कहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन NASA ने चंद्रमा पर अपना

0: केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। मार्च में नासा ने वर्ष 2032 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर परमाणु और सौर ऊर्जा से संचालित एक स्थायी अड्डा बनाने के लिए $20 अरब के कार्यक्रम की घोषणा की थी। जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन को इन मशीनों का निर्माण करने के लिए चुना गया है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: कोलकाता की एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की हिरासत में भेज दिया है। इन आरोपियों को केंद्रीय एजेंसी द्वारा सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। भारतीय वायुसेना ने अधिकारी काडर के तकनीकी शाखा में भर्ती के लिए अभियांत्रिकी स्नातक अभिक्षमता परीक्षा GATE के अंकों के आधार पर चयन करने की योजना बनाई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि GATE के अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को वायुसेना चयन बोर्ड में परीक्षा के लिए सीधे चयनित किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली 10 डब्बों वाली DEMU रेलगाड़ी को चलाने की स्वीकृति दे दी है। ये निर्णय रेलवे क्षेत्र में हरित और टिकाऊ परिवहन को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाइड्रोजन रेलगाड़ी के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कृष्णकांत शर्मा।
2: यह रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। इसमें 2 ड्राइवर पावर कार और 8 पैसेंजर कोच शामिल हैं, जिनकी कुल क्षमता 2500 यात्रियों की है। इसकी कुल विद्युत क्षमता 1200 किलोवाट है। यह ट्रेन शून्य कार्बन उत्सर्जन करती है। इसकी परिचालन गति 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसमें यात्रियों के लिए आधुनिक डिजिटल डिस्प्ले, ऑटोमेटिक दरवाजे और एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम की यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। अमरीकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका और ईरान के बीच मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान की भूमिका की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध के कारण उसे तटस्थ नहीं माना जा सकता। श्री ग्राहम ने दावा किया कि ईरानी सैन्य विमान पाकिस्तानी हवाई अड्डे का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल के बारे में पाकिस्तानी नेताओं की टिप्पणियां चिंताजनक हैं। ये टिप्पणियां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में अब्राहम समझौते में पाकिस्तान के शामिल होने से इनकार के बाद आई हैं। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है और अगले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका व्यक्त की है। वहीं केरलम में मानसून 1 या 2 दिन की देरी से आ सकता है। IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस 162 रन पर सिमट गई। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल राजस्थान के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। और लीजिए अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने क्वाड समूह की एकजुटता और सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए सख्ती को सुर्खियों में जगह दी है। साथ ही कई स्थानीय मुद्दे भी मुख्य पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित किए गए हैं। वीर अर्जुन की सुर्खी है, क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ाएगा निगरानी। पत्र ने भारत

0: अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्रियों की तस्वीरों को भी समाचार के साथ प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने घुसपैठ से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन संबंधी अमित शाह के ऐलान को सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, धर्मशाला नहीं है भारत। पत्र लिखता है, जनसांख्यिकी संरचना बदल जाने से स्थानीय समुदायों में ये भावना बढ़ रही है कि घुसपैठिए सरकारी योजनाओं और राजनीतिक संरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, जिससे भाषा और भूमि को लेकर तनाव बढ़ रहा है। जनसत्ता ने दिल्ली में सीएनजी के दाम 2 रुपए प्रति किलोग्राम और बढ़ाए जाने को पहली खबर बनाया है। अमर उजाला ने भी इस खबर को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर जगह दी है, जबकि दैनिक ट्रिब्यून ने दिल्ली रेस क्लब को राहत न मिलने और जिमखाना पर सरकार के कुछ नर्म रुख को पहली खबर बनाया है।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। CBSE ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन अफवाहों को खारिज किया है जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया। महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 52 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम VC प्रमोद। द हेडलाइंस। सेंटर फॉर्म्स हाई लेवल कमिटी टू स्टडी डेमोग्राफिक चेंज कॉज्ड बाय इन्फिल्ट्रेशन एंड अदर रीजंस। सुप्रीम कोर्ट टू डिलीवर इट्स वर्डिक्ट टुडे ऑन पिटिशंस चैलेंजिंग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स। CBSE rejects claim circulating on social media about breach of its on-screen marking system, saying it was only testing site and not actual platform. IMD issues red alert for severe heat wave conditions in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Vidarbha today. NASA releases details of robotic landers, hopping drones and vehicles it aims to send to moon as part of its plan to build lunar base. And in IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru storm into final beating Gujarat Titans by 92 runs in qualifier 1 at Dharamshala. The centre has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic changes caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar. Census Commissioner along with former IAS Officer Durga Shankar Mishra, former IPS officer Balaji Srivastava and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary Foreigners 1 in Home Ministry will serve as the member secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty but also to national security, law and order, profound changes in social structure and the preservation of tribal society. A report.
3: The high-level committee will conduct a comprehensive assessment of demographic changes occurring across India due to illegal immigration and other unnatural causes. It will also analyze patterns of abnormal population shift at the levels of religious and social communities and will present a planned and time-bound solution for the same. Prime Minister Narendra Modi, in his Independence Day speech from Red Fort last year, had announced about the high-level committee on demographic change.
4: मैं आज देश के सामने एक चिंता एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय

0: ऐसे इतु भी सब ईश्वर पर दिखाई दे दे निगाह से
1: ऐसा
0: कि लोले ताई ही अमी कन के बुनाई शी तो निगाह से तो चार तीन तक होता कोई दिशे ह्यूमिलिटी ना टीचेबिलिटी और ईश्वर के पुला बिसारी आला तो
1: ऐसा
0: और एक तो पॉइंट डाली दियो दे
1: अच्छा
0: इतु
1: प्लीज
0: एक तो पॉइंट तो मुई लगा मन और मुई लगा जीवन दे कुरी की ना आही थका तो मन सब पर की कुरे मन सब पर कुरी बोले आधा आधा मन बड़ा नुकुरी बोले एक ता ईश्वर लगा काम करबू बोले आमी मन सब प्राप्त करबू बोले मन से आमी एक ता वाइफ ना बीवी एक ता बीवी को ना
1: होय
0: होय इतु हुबू बोले भी आमी मन सब प्राप्त करबू मन आमी एक ता ऑफिस ते जामाई के बोले भी आमी मन सब प्राप्त करबू बोले मन आधा आधा काम नुकुरवा एक ता अम्मा उसे बोले भी मुझे लगा मन सब प्राप्त सबसे भाल मुझे लगा बच्चा खान की दी बोले मन ना आमी खान किने का एक ता इतु इच्छा था किसी बोले तो आमी खान आइडियल वुमेन दो भी हुबले पड़ी जाऊँ ना कि ना ईश्वर ब्रह्मांड के तको दी ना मोहला मन तो आधा आधा न होए होली भी छोटो काम होली भी कि जब वो तो डांगोर काम दे मन सब दी ना करवाई भी कोई
1: होय
0: ना
1: होय
0: मनु बड़ा नी दिखिया टाइम दे छोटो काम कुन बार भी अपनी की ना जाने टाइम दे घोर दे बच्चा खान करने भात पकाई दिया से नुहली भी कपड़ा धुलाई ऐसे नुहली भी अपनी एक ता काम कुन बार भी नी दिखा टाइम दे तो मन सब पर करा दी भी ताते एक ता अपनी भाव मई की आइडियल वुमेन हो वाले कारण जर्नी दे आस दे कोई ना आमी कोई दी वाले मन आस दे
1: मैम अपनी क्वालिटीज खान मन बाल रखे मन टीचेबल होले लगे मन ईश्वर के आगे रखे लगे
0: यस
1: और मन की काम भी करे से आधा आधा दिन हो लगे पूरा
0: होय
1: पूरी पूंजी ना मन
0: होय
1: दी ना काम करे से तो मन एक आइडियल माई की इच क्वालिटीज खान पाओले जानवले लगे अपनी मन भाल रहा एक्सप्लेन करे मन भाल रहा बुझाई दिए से मैम तो मैम मुई अपनी ये पास्ता देखो दी मन थे तो मानी तो आइडल वेमेन खान होले मान चैलेंजेस खान भी लोग पाई जाए तो मैम खाली ख्वा देखला न हो तो ये तो होले निम दे कि मान की चैलेंजेस खान लोग पाई जाए मैम
0: पहला कोई दियो दे चैलेंजेस तो सब मन भी लोग पाओ दे
1: अच्छा
0: इतु पृथ्वी दे थका दो चैलेंजेस ना थकी ना दो अमी खान ना थकी वो थकी वो हुन भी इतु चैलेंजेस तो अमी खान के भाल कर दियो ले नहीं दे आरो आही जाए दे अमी खान के शार्पर कर दियो ले स्ट्रॉन्गर ताकत वाला बनाई दियो ले इतु ने लिसनर हुई ना आजी अपनी चैलेंज को नवा जाया से के नुल भी दुख को नवा जाया से बोले मन छोटू नौकरी भी दे अपनी ताकत ईश्वर अपनी की दिव दे आरो ईश्वर अपनी के साइड।

प्रोग्राम चाहिँ को हुने उपलब्ध के जनवार फिल्म पर अलका एकनिक सुनिधि चौहान र करस लगाव से सिर्फ गीत लिखे से शमीर और म्यूजिक दिए से आनंद मिलन

0: हे, रिलैक्स।
1: तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का

0: सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल इसलिए अमान्य नहीं किया जा सकता कि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। यह नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली जयपुर गुरुग्राम नासिक पुणे लातूर और अहल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सरकार ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस के संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला के मामलों के मद्देनजर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार युगांडा से हाल ही में लौटे एक व्यक्ति को बंगलुरु के सरकारी महामारी रोग अस्पताल में जांच और चिकित्सा के लिए अलग रखा गया। जांच में उसकी रिपोर्ट नकारात्मक आई है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे घबराएं नहीं, गलत सूचना न फैलाएं और जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल ने कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान के बीच लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों बालकनी छतों दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि इन मुश्किल दिनों में वे पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि योग भारत के प्राचीन ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है और निवारक स्वास्थ्य देखभाल तथा संतुलित जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्री जाधव ने आज खजुराहो में आयोजित योग महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 25 दिन पहले आयोजित बैठक में भाग लेते हुए ये बात कही। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज दोपहर के कारोबार में 41 अंक बढ़कर 76,051 जबकि निफ्टी 21 अंक के वृद्धि के साथ 23,935 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अनुजा कुमार The Supreme Court today upheld the legality of the Special Intensive Revision SIR of the electoral rolls done by the Election Commission of India and observed that electoral SIR advances the constitutional imperative of free and fair elections. The court held that the Election Commission has the power to conduct SIR under Article 324 of Representation of the People Act 1950 and the rules made thereunder. The judgment pronounced by CJI Suryakant held that when the statute itself authorizes a special revision at any time for reasons to be recorded and in such a manner as the Election Commission may deem fit, the impugned exercise cannot be invalidated merely because it does not conform in every respect to the ordinary modalities contemplated for routine revision. Therefore, it cannot be said that the Commission has acted in excess of its statutory powers. The Central Bureau of Investigation, CBI, has arrested two more accused in NEET UG 2026 examination paper leak case. The agency has arrested 13 accused so far in this case from Delhi, Jaipur, Gurugram, Nashik, Pune, Latur and Ahilyanagar. An accused, namely Dr. Manoj.
2: आ चुके हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए दुनिया में कोई ऐसा है जो आपको मार्ग दिखाने के लिए एकदम तैयार है बताना चाहेंगे हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री सुनील वात्सायन जी जो एक लाइफ कोच हैं और एडिक्शन थेरेपिस्ट हैं सबसे पहले हम तहे दिल से स्वागत करते हैं हमारे आज की विशेषज्ञ श्री सुनील वात्सायन जी का सुनील जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपकी मीठी सी मुस्कान मंद मुस्कान से इस बात की अनुभूति हो रही है कि एक देश यानी कि हमारा देश भारत जिसको हम टोबैको मुक्त देखना चाहते हैं आपके आज सजेशन से आपकी आज टिप से आपके दिखाए हुए मार्ग से निश्चित रूप से हमें मिलने वाला है
3: बिल्कुल मैं उसी आशा और विश्वास के साथ आया हूं कि जो हमारा विकसित भारत होगा वो एक नशा मुक्त हो और खासतौर से हमारा तंबाकू मुक्त अगर होगा ऐसा पूरा विश्वास है मुझे
2: क्योंकि कहा जाता है कि जीवन में सबसे बड़ी धरोहर तो आपका स्वास्थ्य है अगर आप स्वस्थ हैं तो आप सबसे शक्तिशाली हैं और अगर आप शक्तिशाली हैं तो जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं तो सुनील वात्सायन जी से हम बहुत सी बातें करेंगे और हम आपको एक मार्ग निश्चित रूप से दिखाएंगे कहते हैं कि हमें सच्ची राह जो दिखा दे वही तो हमारा सच्चा दोस्त है इसीलिए आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेनबो हेल्पलाइन जहां हम आपको उम्मीद की दुनिया की तरफ लेकर जा रहे हैं एक ऐसी दुनिया जो एकदम टोबैको से दूर होगी

0: गाने की एक लाइन बड़ी बेहतरीन, करिश्मे सच होते हैं इस बात की तू मिसाल है, अगर व्यक्ति चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता, बुरी आदतों को छोड़ सकता है, नई आदतों को अपना सकता है और अपनी जिंदगी को सहज सहज बना सकता है। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं टुवर्ड्स टोबैको फ्री फ्यूचर। हम एक ऐसे भारत की कल्पना कर रहे हैं जहां घर घर से टोबैको दूर होगा और आप सभी एक स्वस्थ जिंदगी जी रहे होंगे। आज के इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री सुनील वात्सायन जी, जो एक लाइफ कोच हैं और एडिक्शन थेरेपिस्ट हैं। हम चाहते हैं कि अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, कोई भी जिज्ञासा हो, तो तुरंत हमसे संपर्क करें। हमारे नंबर्स हैं 2342-1080 या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 2342-1084। दिल्ली के बाहर के श्रोताओं को STD कोड लगाना होगा 018, या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9868107070 इस जादुई नंबर पर। सुनील जी, आपसे एक बात कहना भी चाहूंगी, साझा भी करना चाहूंगी, पूछना भी चाहूंगी कि क्यों दर्द होने पर ही आभास होता है कि दर्द ऐसा होता है। बचपन से माँ हिदायत देती आती है कि बेटा ऐसा ना करना, चोट लग जाएगी, गिर जाओगे, लेकिन हम कभी सुनते नहीं, ये सोचते कि गिरे तो नहीं ना, एक बार और कोशिश कर लेते हैं। ऐसा ही उन तमाम लोगों के साथ होता है जो कहीं ना कहीं टोबैको को अपनी जिंदगी में शामिल कर चुके हैं और उन्हें यही लगता है कि अभी तो कुछ हुआ नहीं, अब क्या होने वाला है। तो क्या ये जीवन का बहुत बड़ा सत्य है कि हम चोट लगने के बाद ही दर्द को महसूस कर पाते हैं और उससे पहले हमें कितना भी समझाया जाए हम ये कहते हैं कि देख लेंगे, कुछ नहीं होता, हमें तो कुछ नहीं होगा।
1: ये एक, मैं इसको इस तरह से ले सकते हैं कि ये मानवीय एक व्यवहार है और मानसिकता है कि हमें हमारा जो मन है वो हर चीज़ को, हर परेशानी को बड़ा कम करके बताता कई बार। इसीलिए कई बार जो आशा है वो हमें लगती है कि ये बहुत पॉजिटिव है, मगर उसका असर कई बार नेगेटिव भी हो जाता है क्योंकि वहाँ हम अपने असर को कम कर देते हैं। तो एक तो वो जो हमारा मन ने हमारे साथ जो काम किया कि वो परेशानी को कम करके बताया, और या फिर कोई ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म हमने इस्तेमाल करा, अपने को मास्क पहन लिया कि जिससे कि मैं अपने को छुपा सकूं और मैं उसमें चलता चला जाता हूँ ये मानते हुए कि मैं इस पे अपनी ताकत से मतलब मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ और जो नशा है या तंबाकू है या वो मेरे से, मैं उस पे हावी हो सकता हूँ। जबकि यही गलतफहमी हमारे को बार बार उसी तरफ ले जाती है, हमारा रिस्की बिहेवियर की तरफ हम और ज़्यादा मुड़ जाते हैं और कहीं ना कहीं हमारे खुद पे, हमारे शरीर पे उसका नुकसान होने लगता है। इसीलिए हम अक्सर ऐसे चैलेंज भी ले लेते हैं जो चैलेंज हमें मालूम है, उसका हमें जानकारी थी, उसके बावजूद भी हमने उनको चैलेंज लिया क्योंकि हम ये मानते थे कि हम प्रकृति पर अपना काबू कर सकते हैं। मगर कहीं ना कहीं जो हमारी प्रकृति है, जो केमिकल्स हैं या जो ऐसी ताकतें हैं, वो हमारे को कहीं ना कहीं एक कमज़ोर नहीं कहेंगे बट हम उनके सामने असहाय हो जाते हैं। वो शायद एहसास बाद में होता है। हम लोग कहते ज़रूर हैं कि क्योंकि हम अपने अनुभव से कहते हैं कि मेरा हाथ जला था, बेटे तुम्हारा हाथ ना जल जाए। तो अब वो चीज़, क्योंकि ये भी ह्यूमन नेचर है कि हम उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, खुद देखना चाहते हैं, कुछ अनुभव से करना चाहते हैं। और आज की जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है जो नई, उसमें भी यही बात देखी गई है कि जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, केवल किताबी कार्यवाही या किताबी जानकारी जो है वो काफ़ी नहीं है, हमें जब तक उसके लिए बाहर नहीं आएंगे। तो इसीलिए मैंने देखा कि स्कूल्स एंड कॉलेजेस में इंटर्नशिप यानी कि एक इंटरफेस ऐसा शुरुआत करी गई है जिससे कि जो बच्चे हैं और जो जिनको हम एडल्ट टू एडल्ट रिलेशनशिप में मानते हैं, वो बच्चे और या कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग ऐसी संस्थाओं के साथ जुड़ें जिनके साथ जो लोग देखा है कि वहाँ नशा करते थे या ऐसी परेशानियों में जूझ रहे हैं, तो उनके अनुभव के से जब वो बांटते हैं, उनके साथ काम करते हैं, तो सीखने की प्रक्रिया में आ जाते हैं। तो ये एक, मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि नहीं सीखते, सीखते हैं बट वो अपना अनुभव लेकर के उसको बनाते हैं। इसीलिए हम इसको कहते हैं ओनरशिप ऑफ नॉलेज एंड ओनरशिप ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि जब तक आप मुझे समझा रहे हैं तब तक वो आपका विचार है, मेरा नहीं है। जब मैं उसकी ओनरशिप ले लेता हूँ, मेरी समझ बन जाती है, वो फिर वो मेरा अनुभव से दूर नहीं जाता। तो हम बच्चों को और या जो यंग लोग हैं, मैं ऐसी कई संस्थाओं के साथ जुड़ा हूँ, नाडा इंडिया फाउंडेशन, तो वो इसी तरह का ही काम करती हैं कि जहाँ पर बच्चों को ओनरशिप दे सके कि ये नॉलेज मेरी नहीं है, ये किताबी नॉलेज नहीं है, इसको थोड़ा सा सेफली इसको अनुभव करके निकल जाओ ना। तो वो जो अनुभव करके देखते हैं, उनके साथ जब काम करते हैं, ऐसे एडिक्ट के साथ काम करते हैं, बातचीत करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन पे एक मन पे छाप छोड़ती है और वो जिसको कहते हैं जिस पे असर पड़ता है उसी को असरदार बना दें। तो हम लोग युवाओं के साथ काम करते हैं इसीलिए कि उनको असरदार बना सकें, और उसी से ही मैं समझता हूँ तंबाकू से बचाव किया जा सकता है। और जैसा आपने कहा, दर्द से जो निकला है उस दूसरे का भी एम्पैथी उसमें वो आ सके कि उस दर्द को वो महसूस कर सके और अपने लिए एक लर्निंग बना सके।
0: जी, आपने बहुत ही वाजिब पॉइंट यहाँ पर रखा है कि कैसे हम यंगस्टर्स के साथ, यूथ के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, कि जब मुझे दर्द हुआ तो महसूस हुआ कि दर्द होता क्या है, और जब स्कूल्स या फिर कॉलेजेस बच्चों के लिए जिस तरह से इंटर्नशिप प्रोग्राम्स रखते हैं, प्लेसमेंट फेयर्स लगाते हैं, तो शायद अगर साल में एक बार या छः महीने में एक बार कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी रखे जहां विभिन्न संस्थाएं जो काम कर रही हैं टोबैको को एकदम ख़त्म करने के लिए, या वो लोग जो टोबैको से ग्रस्त हो चुके हैं, उसकी चपेट में आ चुके हैं, उनसे बाहर निकालने के लिए, तो स्कूल्स या कॉलेजेस को ऐसे
1: एंगेज कर सके, उनको बुला सके, बिल्कुल,
0: तो कहीं ना कहीं बच्चों की जो सोच है उसमें एक बदलाव आएगा, और जब वो खुद लोगों को देखेंगे कि वो उससे मुक्त होना चाहते हैं या किस तरीके से पीड़ित ये सोच रहे हैं कि मुझे मुक्त होना है, या वो लड़ रहे हैं अपने आप से बाहर आने के लिए, तो शायद एक गहरी छाप उन बच्चों के मस्तिष्क पर पड़ेगी, क्योंकि आना वाला फ्यूचर, आने वाला वर्तमान तो उन बच्चों पर ही हमारा निर्भर है।
1: तो ये अक्सर क्या होता है कि जो लोग इसका सेवन कर रहे होते हैं वो एक मास्क पहन करके रहते हैं, जैसे थीम भी है अब की बार का हमारा अनमास्किंग, यानी कि हमें उसको, उस मास्क को हटाना है और उसके पीछे देखना है कि उस जो नशा ले रहा है, जो तंबाकू ले रहा है, उसकी जो पीछे, उस मास्क के पीछे एक दर्द है, उस दर्द के साथ हम जुड़ सकें अपने को, और साथ में जुड़ने के साथ साथ उसको, उसके सहायता कर सकें और ऐसे लोगों से हम बचा सकें। इसलिए अक्सर देखा गया है कि जो बच्चे जब घर में माँ के साथ थोड़ा सा कहीं अनबन हो जाती है तो घर से बाहर निकल के वो कहाँ जाता है,
0: जी,
1: कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि उसको अनकंडीशनल एंगेज करता है, और वो एक तंबाकू बेचने वाला होता है, वो वहाँ खड़ा रहता है, उसके बावजूद भी उसको मना नहीं करता, वो अनकंडीशनल है, और फिर धीरे धीरे उसको लगता है कि शायद मैं, अगर जो मेरे अंदर परेशानी चल रही है, जो माँ के साथ या बहन के साथ जो तनाव बना है मेरा, उसका हल शायद वो जो धुआं वहाँ चल रहा है या अवेलेबल है, वो फिर उस रास्ते निकल जाता है, चाहे वो दोस्त के माध्यम से आए या पॉइंट ऑफ सेल जहाँ पर वो बिक रहा है वहाँ भी वो खड़ा होना है, क्योंकि उसको कुछ ऐसा स्पेस चाहिए जो सेफ़ हो। और कई बार क्या होता है, जबकि हमारे यहाँ कानून ऐसा है, मगर कुछ कानून ऐसे हैं जो कि उसको कहीं ना कहीं वो लूप होल, उसमें कहीं ऐसे रास्ते बन जाते हैं कि बच्चों के लिए और ख़ासतौर से जैसे 18 साल से कम बच्चे के लिए बिल्कुल बैन है, मगर फिर भी बच्चों को कहीं ना कहीं मिल जाता है। स्कूल के जो परिसर है उसके 100 मीटर के दायरे में आप तंबाकू की कोई दुकान नहीं चला सकते, मगर कहीं ना कहीं ऐसी चूक हो जाती है, और वो बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि तंबाकू, बल्कि मैं तो केवल ये कहता हूँ कि तंबाकू जो है वो ज़्यादा, या वो लोग जिन्होंने छोड़ा है, ज़्यादा मुश्किल था उनके लिए जो लोग शराब पीते थे या स्मैक पीते थे, वो इसलिए क्योंकि ये एक्सेप्टेबल भी है, अवेलेबल भी है, अफोर्डेबल भी है और एक्सेसिबल भी है। तो ये जो चीज़ है ये हमारे को कहीं ना कहीं, जितना ज़्यादा एक्सेसिबल होती है कोई चीज़ उतना ज़्यादा हम और उसको इस्तेमाल करते हैं, प्रेरित होते हैं, और कहीं ना कहीं किसी का इंटरेस्ट है, वो मास्क पहने हुए घूम रहा है, जो चाहता है कि उसकी बिक्री और हो, तो जब बिक्री और होगी तो नेचुरली वो चाहेंगे कि, और वो बिना मास्क के तो नहीं आएंगे, तो यानी कि उनकी जो अपील है वो बड़ी ग्लैमर को एक फैशन का एक साइन देता है, एक स्टाइल देता है, हमारी कैबर जो पिक्चर्स हैं या OTT प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ भी इसका कैबर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल दिखाया जाता है, जिसका कहीं ना कहीं बच्चों पे सीधा सीधा असर पड़ जाता है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो सीधे सीधा देखते हैं, सीधा सीधा उनके मन पे छाप आती है
0: कि एक बार कोशिश की जाए,
1: हाँ,
0: कि कुछ लोगों को
1: जिज्ञासा जो है वो पैदा कर दे, हो जाती है। और कई बार क्या होता है कि हमारे आसपास, अब जैसे अगर मैं कहूँ परिवार में भी कोई अगर तंबाकू का इस्तेमाल करता है तो, और वो एडल्ट है, तो वो अवेलेबल तो है ना वहाँ पर,
0: बिल्कुल
1: और वो चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, वो जिज्ञासा कहीं ना कहीं हमारे को उस तरफ ले जाती है। और परेशानी किसको नहीं है, तो इलाज के रूप में, क्योंकि इसलिए हम ये कहते हैं तंबाकू अपने में परेशानी नहीं है, परेशानी का इलाज के रूप में लिया जाता है इसको,
0: जी
1: कि कहीं इससे हमारे को एक थकान, आराम। इसलिए आपने देखा कि आजकल पाउच वाले जो तंबाकू हैं उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वो लोग तंबाकू का सीधा, और ओरल कैंसर का इसमें चांसेस और ज़्यादा बढ़ गए। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम उसको, उसकी जो स्वीकार्यता है उसको और कम करें, एक्सेप्टेंस जो है वो कम करें, और जागरूकता तो है ही अपनी जगह।
0: जी अगर हमें जड़ से समाप्त करना है इस समस्या को, यानी कि टोबैको कंजम्पशन को, तो हमें जड़ से ही काम करना होगा।
1: बिल्कुल, तो ये इसको भी अक्सर क्या होता है कि हम शायद 14 साल, 15 साल, 18 साल की उम्र में जाकर के लोगों को बताते हैं, जबकि मैं समझता हूँ कि जब प्री प्राइमरी स्कूल होता है वहीं से हमारे विचार बच्चे के जो है ना डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। हो सकता है कि आपकी भाषा और आपका तरीका वो ना हो जो आप 14 साल के बच्चे के लिए पढ़ाते हैं, आप उसी चीज़ को ही एक अलग ढंग से, कि मैं कैसे उस बात को कहें, ये नेचुरली ये विशेषज्ञों का विचार है कि उनको अपना खुद ऐसा तरीका निकालें कि जो प्री प्राइमरी स्कूल है, जब स्कूल बच्चा घर में है तभी ये मैसेज क्यों ना चला जाए।
0: जी एक प्रश्न हमारे पास आया है
1: हाँ जी,
0: ईशिका रस्तोगी का, और ये कहती हैं कि माता पिता या टीचर्स कैसे आइडेंटिफाई करें, जो अर्ली साइंस कहते हैं ना कि हर समस्या के कुछ अर्ली साइंस होते हैं, हमें कुछ ना कुछ अपने बच्चे के अंदर बदलाव देखने के लिए मिलता है, कुछ तो बदला हुआ है, कुछ तो रंग रूप बदला हुआ है, कुछ तो जो दिनचर्या है उसमें तो कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है, बच्चे का जो

0: करें इसके बारे में शिखा दस्तोगी
1: का,
0: चाहती हैं।
1: मैं समझता हूँ शी मस्ट, उनका बहुत अच्छा प्रश्न है ये।
0: जी
1: और ये एक प्रश्न है जिसको हम कहेंगे कि, और हमारी जो अपील है, जो थीम है इस वर्ल्ड नो टोबैको डे का, उसी से जुड़ा हुआ है कि बच्चा, परिवार और घर एक ऐसी जगह है जहाँ हम सारे मास्क उतार देते हैं।
0: जी।
1: जो संबंध है, जो हमारे संबंध पारिवारिक संबंध है, उसमें हम अपने मास्क या कोई भी मुखौटा जो है वो हम आके उतार देते हैं। कोई सी भी हमारी पहचान हो समाज में, जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ, मगर जब घर आते हैं तो उन सब पहचानों को शायद हैट की तरह हम अपने बाहर, जिसको कहते हैं डोर तक, डोर पर रखाते हैं। मगर एक जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये कि एक कहीं ना कहीं बच्चा जो है वो मुखौटा पहनना शुरू कर देता है, तो वो पहला ही साइन है कि जहाँ पर वो आपसे छुपा रहा है। या फिर एक ऐसा घर में माहौल बना है कि जहाँ पर आप वो अगर बताना चाहे कि मैं परेशानी में चल रहा हूँ, और मेरे को उसको अगर ये मैसेज मिला हुआ है या परसेप्शन बनी हुई है बच्चे की कि अगर मैंने बताया कि मैंने ये किया है तो मेरे साथ क्या होगा,
0: जी,
1: तो अगर वो वहाँ डर का भाव है तो नेचुरली बच्चा अपने को छुपाएगा। और अगर ये है, ठीक है बेटे तुमने कल ऐसा किया, हम तुम्हारे साथ हैं, अब आगे क्या करना है उस पर काम करते, क्या तुम्हारे को मेरी सहायता की जरूरत है या तुम खुद संभाल लोगे। तो ये जो वार्तालाप है ये उस मास्क को हटाने के बाद का है। तो यानी कि वो बच्चा, वो पेरेंट्स को भी वो ट्रेनिंग का हिस्सा है कि वो बच्चे उस मास्क को पहचान सकें कि जो चेहरा मुखौटा उसने पहन लिया है, कुछ समय से कुछ बदलाव आ रहा है और वो अकेलेपन में, और एक हमें जैसे मैं समझता हूँ कि घर में हम लोग एसिड को कभी भी खुला नहीं छोड़ते क्योंकि हमें मालूम है वो हार्मफुल है, बच्चे के लिए नुकसानदायक है। तो उसी तरह से हमें इक्वली सिगरेट और बीड़ी को भी या तंबाकू को भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या कहीं खुला तो अवेलेबल नहीं है। क्या ही स्कूलों में ऐसे बच्चे देखे गए हैं जहाँ उनके बैग्स में तंबाकू के, और ख़ासतौर से आजकल इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट आ गई हैं जिनको एंड्स बोलते हैं, तो वो उस तरह की सिगरेट भी वहाँ पर पाई गई जबकि वो बैन है।
0: जी।
1: उसी तरह से 18 साल से के बच्चे के पास तो सिगरेट का होना नहीं है, नहीं हो सकना, होना चाहिए। तो वो सप्लाई कहाँ से आ रही है, तो वो उसका बैग का चेक करना। और एक तंबाकू, आजकल पहले तो यही हमारा सिगरेट का और तंबाकू का है कि उसका स्मेल आती थी, अब जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट आ रही हैं उसमें उनका स्मेल नहीं है
0: जी।
1: और वो दिख भी नहीं रहे, धुआं भी नहीं दिखता है। तो वो आपने, इसका मतलब क्या हुआ, इंडस्ट्री ने कहीं ना कहीं उन चीज़ों को रूल आउट कर दिया जिससे कि बच्चे को सहजता के साथ और आपके लिए मुश्किल हो गया। तो वहाँ देखना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे के पास वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहाँ से आई, कैसे आई, और फिर हम कैसे उसको उसके लिए उसके साथ दे सकते हैं। कन्फ्रंट करें, मगर कन्फ्रंट इसलिए नहीं करें कि आप अपना गुस्सा और अपना डेस्परेशन दिखाएं, बल्कि अपने साथ उसको जोड़ सकें और उस मास्क को हटाने में मदद करें उसको।
0: जी, और एक बात और जोड़ना चाहूंगी,
1: और उसमें ताकत चाहिए होती है मास्क हटाने में, ध्यान रखिएगा, दर्द कई बार दर्दनाक होता है,
0: बिल्कुल
1: परेशानी होती है, इसमें काउंसलर या लाइफ कोच की आप मदद ले सकते हैं।
0: जी, और एक बात और जोड़ना चाहूंगी आपकी बातों में, जब आप ये कहते हैं और कार्य करते हैं और सोचते हैं कि आपका बच्चा गलत रास्ते पे ना जाए, सबसे पहले हमें अपने घरों में भी इंश्योर करना होगा कि हमारे घर के लोग
1: अवेलेबिलिटी ना हो,
0: हाँ, कि हमारे घर के लोग जब इस तरह से सेवन करेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे को देखेगा,
1: बिल्कुल,
0: और उसे लगेगा कि ऐसा तो होता,
1: नॉर्मलाइज कर दिया,
0: नॉर्मलाइज कि पिताजी करते हैं या घर में और कोई व्यक्ति है वो करते हैं। जी, तो इसको भी कहते हैं कि अगर हमें बच्चे में बदलाव चाहिए तो सबसे पहले खुद में बदलाव लाना होगा, बच्चे में।
1: यह है कि एक सिंगल सिगरेट नहीं बिकनी चाहिए, मगर अगर वो बीड़ी या सिगरेट वाला एक सिगरेट दे देता है जो बहुत सस्ती है तो वो अफोर्डेबल हो गई।
0: जी,
1: तो वो भी वहां पर कहीं ना कहीं इस तरह के मुद्दे हैं जो कि उनको वो करता है, मतलब।
0: जी, एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो दोस्त, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं।
2: जी, हेलो, नमस्कार।
0: जी नमस्कार, सबसे पहले आप,
2: मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से, और मैं ये पूछना चाहता हूँ।
0: जी
2: जी, मैं राकेश बोल रहा हूँ, और मेरा सवाल ये है विशेषज्ञ से, क्योंकि कुछ पेरेंट्स जो है बच्चों से नशे की चीजें मंगा देते हैं कि भाई कि मुझे तुम बाजार जाओ और मुझे कबीर या तंबाकू या शराब लाओ, और बच्चा घर में ला के देता है, तो कई बार ये बच्चों
0: जी
2: दो एक्स लाते हैं, तो ऐसे बच्चे ऐसे पेरेंट्स को क्या करना चाहिए कि किस तरह से क्या बच्चों को चीज मंगानी चाहिए।
0: जी बहुत अच्छे सवाल आपने यहाँ पे पूछा, इसी बारे में बात कर रहे थे कि किस तरीके से अभिभावक कभी कभी जिम्मेदार होते हैं, खुद घर पे सेवन कर रहे हैं और बच्चों से उम्मीद कर रहे हैं कि बच्चे इस राह पर ना जाएं, तो पहले तो खुद को

0: कंट्रोल करना होगा, बच्चों को उस राह पर जाने से रोकना होगा। बहुत अच्छा सवाल है राकेश जी, आपका बहुत धन्यवाद।
1: राकेश जी आपने बहुत सुंदर और बिल्कुल सटीक और ये कहूँगा कि बहुत मुश्किल सवाल है पेरेंट्स के लिए, ख़ासतौर से उन लोगों के लिए जो लोग ऐसा ही प्रक्रिया में रहते हैं। अक्सर देखा जाता है कि जो तंबाकू है उसको हम एक ट्रेडिशन का हिस्सा मानते हैं और वो इतना एक्सेप्टेबल होता है, चाहे वो हुक्के का हो या कोई और चीज़ का, कि हमें पता ही नहीं लगता कि हमने क्या उससे बच्चे से मंगाना और क्या नहीं मंगाना। ये हम लोगों ने जब पीयर बेस्ड अप्रोच में कम्युनिटी में प्रोग्राम किए तो उसके अंदर जब हमने बच्चों को जाके कहा कि आप उनके घर गए तो कई बार वो बच्चे वहाँ पर उनके घर में तंबाकू की दुकान चला रहे थे और वहाँ बैठ जाया करते थे, जो कि इलीगल है पहली चीज़। उसी तरह से उसके जो माँ बाप हैं वो उनको मंगाया करते थे। तो ये जो चीज़ है, ये जो फ़र्क है, ये तो माँ बाप का ही इसको जब तक हम, क्योंकि वो तो एडल्ट हैं, यहाँ बच्चे को समझाने की आवश्यकता नहीं है, पेरेंट्स को समझाने की आवश्यकता है। और पेरेंट्स को भी ये एहसास दिलाने की बात है कि जो आप यहाँ पर उनको एक्सेप्टेंस दे रहे हैं उसको एक्सेप्टेबल कर रहे हैं और एक अवेलेबल भी कर रहे हैं, क्योंकि वो जाते हुए कई बार तो बल्कि ये हो जाता है कि वो बीड़ी को अगर कहीं दूर है जलाने का उसका स्रोत तो वहाँ वो जलाएगा और फिर लेके आएगा, तो वो जो बीच का जो रास्ता है वो बीड़ी जले रहे उसके लिए उसको कहीं ना कहीं लेना पड़ता है, यानी कि तंबाकू वो उसको इनहेल करेगा तभी वो जलती रहेगी। तो यहाँ पर हमने सर्व सुलभ करा दिया उसको। दूसरा ये कर दिया कि नॉर्मलाइज कर दिया कि तो मैं भी पीता हूँ तो तुम भी अगर भी, और जब तुम बड़े होंगे तो पी लेना। अक्सर माँ बाप को ये पूछता है बच्चा, मैं कब तंबाकू ले सकता हूँ
0: जी?
1: वो बहुत मुश्किल सवाल है जवाब देना, और अक्सर जो है हम यही कह देते हैं कि वो जब बड़े हो जाओगे तब कर लेना।
0: जी,
1: बच्चा इसी दौड़ में शुरू हो जाता है कि मैं कब बड़ा होऊंगा तो मैं ऐसे सारे काम करने लगता हूँ जो मैं, मुझे बड़ा कम से कम मैं दिखे, वो मास्क पहन लेता हूँ जबकि वो मैं बड़ा भी नहीं हुआ कि मैं उन जिम्मेदारियों को या उन नुकसान को समझ सकूं जो नुकसान होने वाले हैं, चाहे मैं गाड़ी चलाने की बात हो, चाहे टू व्हीलर चलाने की बात हो, कोई भी ऐसा रिस्की जो कि हमें मना किया गया है, शराब की बात है। तो वो बच्चा कहीं ना कहीं, तो मैसेज जो हमने दिया वो कहीं ना कहीं गलत था। तो आपके जो परिवार में जो नॉर्म्स हैं वो क्लियर हों, एसिड एसिड है, तंबाकू तंबाकू है, नुकसान नुकसान है। तो यानी कि वहाँ हाँ या ना के बीच की कोई और ग्रे एरिया ना हो, सीधा कि हमारे यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है।
0: जी जी, बहुत ही आपने वाजिब बात यहाँ पर की है, और जैसा कि हमने कहा कि जड़ से बीमारी उत्पन्न हो रही है, जड़ से ही अगर बीमारी को ख़त्म कर दिया जाए तो जो हम कल्पना कर रहे हैं कि हम तंबाकू से मुक्त हो जाएंगे, हम बिल्कुल एक ऐसे भारत की कल्पना ही नहीं, हम उसे साकार भी कर सकते हैं अगर हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर कोशिश करे। घरों पर तो हमें ही कोशिश करनी होगी, क्योंकि
1: हम को और परिवार को ही करनी होगी।
0: जी, तो होंगी और भी बहुत सारी बातें, क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री सुनील वात्सायन जी, जो एक लाइफ कोच हैं और एडिक्शन थेरेपिस्ट भी। आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमसे संपर्क करें, आप कॉल कर सकते हैं 2342-1080 या फिर 2342-1084, इन नंबर्स के माध्यम से 011 एसटीडी कोड है, या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9868107070। इस जादुई नंबर पर आपके पैगाम तुरंत पहुँचते हैं हम तक।

0: वेलकम बैक, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल और प्रोग्राम चल रहा है रेनबो हेल्पलाइन। रेनबो हेल्पलाइन में मैं हूं आपके साथ गीतिका उनियाल और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री सुनील वात्सायन जी जो एक एडिक्शन थेरेपिस्ट और लाइफ कोच हैं और आपको बता रहे हैं कि कैसे आप अपने आप को टोबैको से दूर रख सकते हैं। अगर किसी कारणवश आप टोबैको की चपेट में आ गए हैं, यानी कि अगर आप उसकी ओर आकर्षित हो गए हैं और अब टोबैको यानी कि ये जो समस्या है जिसने आपको अपनी ओर आकर्षित किया और अब आपको अपनी चपेट में ले लिया, इससे आप अपने आप को छुड़वाना चाहते हैं। कहते हैं कि हर समस्या का हल है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें खुद को तैयार करना होगा, क्योंकि जब तक हम खुद को तैयार नहीं करेंगे, अपने परिजनों को तैयार नहीं करेंगे, तो कोई भी जंग नहीं लड़ी जा सकती। हमारे पास बहुत सारे सवाल आ रहे हैं यहाँ पे सुनील जी। एक सवाल यहाँ पर आया है हमारे पास मोहम्मद इम्तियाज का, जवाहर कैंप कीर्तिनगर नई दिल्ली से, और ये कहते हैं कि ये 40 वर्ष के हैं, ये स्वयं भी टोबैको का इस्तेमाल नहीं करते हैं और लोगों को भी इससे दूर रहने की हिदायत देते हैं। और इनका सवाल ये है कि ऐसा क्या किया जाए कि घर घर तक इस बात को पहुंचाया जाए कि क्यों टोबैको यानी कि हम जो भी तंबाकू खाते हैं, जिस भी फॉर्म में इसका इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे लिए हानिकारक है, और लोगों को जागरूक करने के साथ साथ क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि वो लोग जो इसे बेचते हैं उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए या फिर दुकानों में ये उपलब्ध ही ना हो, तो इससे कहीं ना कहीं रोकथाम की जा सकती है।
1: आपने जो एक बात सुझाव दिया है कि कानून इसमें क्या कहता है, कानून बड़ा जिसको बोलेंगे सख्त है। खासतौर से अगर हम देखें कि जो अवेलेबिलिटी है कि लाइसेंस जो उनको मिल रहा है, लाइसेंस नहीं है, वो स्वयं कोई भी बेच लेते हैं। कई जगह लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है कानून के हिसाब से, तो वहाँ पर रद्द किया जा सकता है अगर वो उसको प्रॉपर वो नहीं कर रहे हैं। बट जो कोटपा एक्ट है उसका इस्तेमाल करके जो लोकल वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसका पूरा मतलब कंट्रोल किया जा सकता है, बट उसके अंदर जो सहयोग चाहिए वो वहाँ की जो लोकल नेबरहुड RWs हैं, जो स्कूल्स हैं, जो कॉलेजेस हैं, और ख़ासतौर से जो हमारा सिविल सोसाइटीज़ वहाँ पर हैं, वो लोग का असर इसके अंदर बहुत ज़रूरी है। उनका असरदार होना या कलेक्टिव एफर्ट होना ज़रूरी है। यानी कि ये समस्या एक ऐसी है जैसे हम रोज़ाना सांस लेते हैं और जीवित रहते हैं, तो हमें रोज़ाना ही इस तरह के प्रयास जारी रखने पड़ेंगे। हाँ, एक व्यक्ति ही अगर ये जारी रख रहा है तो जरा मुश्किल पड़ जाता है, मगर रोज़ाना एक व्यक्ति अगर एक काम को कर रहा है तो कल आज अगर वो रेस्ट करता है तो कल दूसरे वाला उस वीक को काबू रखे। तो वो जो हमारे को एक कलेक्टिव एफर्ट चाहिए, जो सबका मिला जुला एक एफर्ट चाहिए, वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है, और वो उन लोगों को भी ये चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं जिनको ये नहीं मिलना चाहिए, चाहे वो परिवार से मिल जाता है या दुकान से मिल जाता है जहाँ पर ये बेचा जा रहा है। जबकि वहाँ पर लिखा होता है कि 18 साल से कम, तो आप ये चेक कर सकते हैं कि जो दुकानें हैं तंबाकू की, क्या वो 100 मीटर की दूरी से अगर बाहर हैं, मतलब उसी के अंदर हैं, तो नेचुरली आप अपना उसको असरदार बनाएं, स्कूल को उसमें इन्वॉल्व करें और इस चीज़ को फिर आगे कर सकते हैं। उसी तरह से जैसे सिंगल सिगरेट नहीं बेची जा सकती, मगर आप देखेंगे कि हमारे यहाँ सिनेमा में भी कई बार सिंगल सिगरेट हीरो आता है और सिगरेट मांगता है तो वो एक सिगरेट उसको दे दी जाती है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये प्रवृत्तियाँ और या जो डिपिक्शन है तंबाकू को बार बार दिखाया जाता है, उसको ऊपर कानून बने हैं, बट कानूनों का इस्तेमाल और रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी है कि वो इस तरह की प्रक्रियाओं में उसको लाया जा सके। अब आता है सवाल कि हम किस तरह से जो हैं वहाँ पर सहयोग को और बढ़ावा दें। आपने अपने को 40 साल की उम्र है, स्वस्थ रख रहे हैं, तो आप बहुत सारों के लिए, आप लोगों के लिए रोल मॉडल हो सकते हैं और हैं। उसी तरह से आप भी औरों को जोड़ें, 5 व्यक्तियों को भी अगर आप जोड़ते हैं और आप उनको सपोर्ट करते हैं, तो आप एक अपना एक ग्रुप बनाते हैं, एक क्लब बनाते हैं, जिसके अंदर लोगों को, मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि डराएं, धमकाएं या ऐसा कोई तरीका अपनाएं, हाँ, अपने उनके साथ एंगेजमेंट रखें, बातचीत शुरू करें, जो उनकी मेंटल हेल्थ की जो इश्यूज हैं, जो उनकी परेशानियाँ हैं, उनको समझें और समझ करके जवाब दें, तो रास्ते निकल सकते हैं
0: जी। एक सवाल और हमारे पास आया है अमन कुमार का, बागपत उत्तर प्रदेश से, और यही कह रहे हैं कि सरकार अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करती है और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से ये कोशिश की जाती है कि किस प्रकार से युवाओं को बचाया जाए, लेकिन फिर भी कुछ युवा हमारे बच जाते हैं, और जो बच जाते हैं वो कहीं ना कहीं मानसिक परेशानियों से ग्रसित हो जाते हैं, बहुत सारे अपराध बोध क्षेत्रों में अपने आप को संलग्न कर लेते हैं। तो ऐसे में जब समस्याएं जीवन में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती हैं तो आदमी को लगता है, व्यक्ति को लगने लगता है कि चलो थोड़ी देर के लिए कुछ कष्ट लगाकर अपनी समस्या का निदान पा लेते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए और ऐसे युवाओं को गलत रास्ते पर जाने से कैसे रोका जाए, इसकी तरफ हमारी जो जिम्मेदारी बनती है, समाज की, पूरे समाज की जिम्मेदारी बनती है, तो कैसे हम सभी अपनी अपनी भूमिका निभा सकते हैं और कैसे एक जिम्मेदार नागरिक को होने के नाते और एफएम रेनबो के श्रोता होने के नाते कैसे अपने जो देश के युवा हैं उनके प्रति हम अपनी कर्तव्यनिष्ठता दिखा सकते हैं कि हम भी, आप भी, सभी एक ही देश का हिस्सा हैं।
1: अमन, आपने पहला कदम तो रख दिया जब आपने एफएम रेनबो को सुना और सुनकर के इस बात पे चर्चा की, विचार किया और प्रश्न करा। ये जो प्रश्न है ये बड़ा अमूल्य है, क्योंकि ये प्रश्न लोगों के दिमाग में, जहन में आता ही नहीं, बहुत से लोगों के नहीं आता और वही छूट जाते हैं। दूसरी बात आती है कि जो हमारा स्कूल सिस्टम है, जो हमारा एजुकेशन है, उसका बेसिस अगर हमारा वेलबींग है, खुशहाली है, हेल्थ है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि बच्चा जो है वो इससे नहीं दूर रह सकता। क्योंकि कोई भी एजुकेशन का जो सिस्टम है उसमें 12 साल किसी स्कूल के पास 14 साल बच्चा रहता है, और अगर वो ड्रॉप आउट हो जाता है तो उसके चांसेस और बढ़ जाते हैं कि वो ऐसा तंबाकू का इस्तेमाल ना करें। वो अलग बात है कि स्कूल में भी रहते हुए भी आपको ऐसे बच्चे मिल जाएंगे, और ऐसी रील्स आप देखते हैं अक्सर सोशल मीडिया पर जहां बच्चे जो हैं वो लेते हुए दिखते हैं। वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, गलत है कि इस तरह की चीज़ें या इस तरह की रील्स को प्रमोट कर दिया जाता है या वायरल हो जाती हैं, उससे वो प्रेरक बन जाती हैं जबकि उसको मैसेज कुछ और देना चाहिए। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत से लोग छूट जाते हैं, और कई बार हमारे को ये मानते हैं कि अल्कोहल का नशा या जो नशा और या फिर तंबाकू से वो या ड्रग्स जो है वो ज़्यादा हार्ड है और ये सॉफ्ट है, जबकि ये देखा गया है कि जो तंबाकू है वो ज़्यादा मुश्किल होता है अल्कोहल और ड्रग्स या कोई भी और एडिक्शन को से बाहर आने में, क्योंकि ये अफोर्डेबल भी है, एक्सेप्टेबल भी है और लीगल भी है, तो उसके कारण और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इसको छोड़ना। तो भाई मेरे, जो लोग ले रहे हैं उनसे नाता मत जोड़ो, तोड़ो मत, बट जोड़े रखो
0: जी।
1: इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हें पीनी है, बल्कि इसलिए कि जिससे कि तुम उनके साथ संबंध बने रहेंगे तो आप उनको उससे परेशानी से बाहर निकलने में मदद कर पाएंगे
0: जी। और ऐसे ही सवाल हमसे ईशा ने पूछा था कि बिना जज किए हम कैसे किसी को सही राह पर ला सकते हैं, तो यही तरीका है कि आप जज मत कीजिए लेकिन आप उनके सच्चे

0: साथी बन जाइए। एक कॉलर इस वक्त हमारे से टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो दोस्त, क्या अब तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है? लगता है इन दोस्त तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। फिलहाल अगले कॉलर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हेलो
1: हेलो
0: जी नमस्कार, अपना नाम बताएं, अपना प्रश्न
1: हेलो
0: पूछें। जी आपकी आवाज़ हम तक पहुंच रही है, अपना नाम बताकर प्रश्न पूछिए। हेलो दोस्त, आपकी आवाज़ हम तक पहुंच रही है, अगर किसी कारणवश
1: हेलो
0: जी आपकी आवाज़ पूरी पूरी हम तक पहुंच रही है, आप सवाल पूछिए। और अगर सवाल पूछने में असमर्थ
1: हेलो
0: हैं तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। लगता है इन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। दोस्त हम यही चाहेंगे कि आप हमें पुनः कॉल करें। तो एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद फिर बहुत सारी बातें आपके साथ होंगी इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है रेनबो हेल्पलाइन।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: वेलकम बैक, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल और प्रोग्राम चल रहा है रेनबो हेल्पलाइन। रेनबो हेल्पलाइन में इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं अगले कॉलर। हेलो दोस्त, क्या अब तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है? हेलो, हम अपने मित्र से निवेदन करना चाहेंगे कि मित्र आप हमें पुनः कॉल करें, लगता है कि आप काफ़ी देर तक हमारा इंतज़ार करते रहे। खैर कोई बात नहीं, आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि आप कॉल करें। जी सुनील साहब, आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहते हैं हम यहाँ पर, कि हम अक्सर बात करते हैं कि अब परेशानी में तो फंस गए, अब परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता हमें कौन दिखाएगा, कौन हमें बताएगा कि कैसे हम अपने लिए एक नया साफ सुथरा रास्ता चुन सकें?
2: देखिए, जो व्यक्ति तंबाकू ले रहा है उसको कहीं ना कहीं दो तरह के फीडबैक उसको मिल रहे होते हैं। एक वो फीडबैक जो कि अंदर से उसको एहसास हो रहा होता है कि अब मेरी सांस या जो मेरी क्षमता है, शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता, उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आ रही है। दूसरा फीडबैक मिलता है जो समाज दे रहा होता है
1: जी,
2: और कहीं ना कहीं आसपास वाले भी उसके प्रति अपनी चिंता व्यक्त कर रहे होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम किसी क्विट हेल्पलाइन या कहीं ऐसी मदद लेने जब जाते हैं तो अपने को एक तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें देखा गया है कि एक ऐसा एहसास जिसमें नॉन जजमेंटल हो, जैसे इशिता ने बोला था कि कोई उसको जज ना करे, ऐसा एक माहौल हो जहाँ पर वो बिना बोले भी क्या वो अपना मदद ले सकता है, क्योंकि हमारे हेल्प सीकिंग बिहेवियर बहुत कम है, हेल्थ सीकिंग बिहेवियर बहुत कम है
1: जी।
2: तो ऐसे तरीके अपनाए जा सके, ऐसे बहुत सारे तरीके अपनाए

0: जा रहे हैं जहां पर लोग अपनी मदद के लिए सामने आ सकते हैं। तो ऐसा जैसे योग अगर कहीं हो रहा है और आप योग को ज्वाइन कर लेते हैं, तो जब आप स्वस्थ होना शुरू हो जाते हैं तो आपका और क्षमता बढ़ जाती है उसको छोड़ने की, पहली चीज़ तो ये। मगर डॉक्टर का अगर हम उसमें साथ में कहीं ना कहीं अपना टेस्टिंग करवा लेते हैं या अपनी परिस्थितियों को देख लें कि हमारे कोई ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो हमारे को रूल आउट करने में मदद करता है। इसी तरह से क्विट हेल्पलाइन अवेलेबल हैंगी जो कि आपको आपको मदद देते हैं ऑनलाइन, प्लस उसके अलावा आपको मैसेज भी ऐसे मिलते हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप देखें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उनकी जो स्कीम जो हेल्पलाइन है वो है 1800112356। तो अगर आप इस कॉल के मतलब इस कॉल के बाद या इस प्रोग्राम के बाद अगर आप कॉल करते हैं तो आपको एक जानकारी मिलेगी। दूसरा जो चीज़ आती है वो ये कि आपके पास ऐसे मैसेज आएंगे जो मोटिवेटिंग होंगे और आपको याद दिलाएंगे कि आज के दिन मुझे तंबाकू नहीं लेना है। और ऐसा बहुत सारे और ऐप्स भी हैंगे जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे क्विट क्लिनिक भी बन गए हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में एक कम से कम क्लिनिक, जैसे दिल्ली में अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे तो चेस्ट क्लिनिक है, और उसी तरह से जितने भी हमारे डी एडिक्शन सेंटर्स हैं वहाँ भी आप रीच आउट कर सकते हैं। इसमें एक्यूपंचर का भी इस्तेमाल किया जाता है, योगा का भी इस्तेमाल करा जाता है, आयुर्वेद का भी इस्तेमाल करा जाता है, और ऐसे भी तरीके अपनाए गए हैं जिसमें निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी है। मगर कई बार क्या होता है कि वो व्यक्ति जो है वो उसी का ही दुरुपयोग भी करने लगते हैं, कई बार वो तंबाकू छोड़ भी देते हैं बट निकोटिन का इस्तेमाल। तो इसका मतलब कि जो डॉक्टर का और काउंसलर का जो सुपरविज़न है वो बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आप अगर वहाँ जाते हैं तो आपकी मदद हो पाएगी। और ये जो मदद है इसकी खुद की तैयारी बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसा दिन चुन लें कि मुझे आज से नहीं लेना है। इस बात को जाने पहचाने और कह दें,
1: जी
0: यानी कि आसपास जो लोग हैं उनको भी बता दें कि मैंने कल से छोड़ रहा हूं मैं। तो यानी कि एक संकल्प जो है आपकी, क्योंकि संकल्प शक्ति इसमें बहुत काम आती है। मगर जो मेडिकल प्रॉब्लम्स आएंगी आपको, जो छोटी मोटी अगर कोई चाहे वो कॉन्स्टिपेशन से जुड़े हुए हो या हमारे अंदर ड्राइनेस कहीं फील कर रहे हैं, माउथ में कहीं कोई ऐसी परेशानी महसूस कर रहे हैं, उसके लिए आप अपने जो पड़ोस में जनरल फिजिशियन है उनसे आप मिल सकते हैं और उनसे दवाइयाँ ले सकते हैं। क्योंकि अभी तक आप सेल्फ मेडिकेशन करते थे, यानी कि आपकी हर बीमारी का इलाज तंबाकू था। अब वो परेशानी को आपको डॉक्टर से मदद लेनी है, काउंसलर से मदद लेनी है, और ये क्विट हेल्पलाइन है वो आपके लिए बड़ी असरदार हो सकती है।
1: जी जी बिल्कुल, आपने वाजिब बात यहाँ पे की। अब जैसा कि आपने कहा कि स्कूल कॉलेजेस हम इन तमाम स्टूडेंट्स तक कनेक्ट हो सकते हैं,
0: हाँ
1: लेकिन
0: जी,
1: एक वर्ग ऐसा भी है हमारा जहाँ इतने सारे युवा हैं, जैसे कि एक मित्र ने भी हमसे पूछा था कि बहुत सारी परेशानियों से ग्रसित हैं पर उन तक पहुंचने वाला कोई नहीं। एक समाज ऐसा है जहाँ हमें पहुंचना होगा, चाहे वो गली हो, गांव हो, कस्बे हो, उसके लिए भी क्या एक छोटी छोटी टीम्स बनाकर जो वहाँ समाज को शिक्षित कर सके, क्या इस तरह से अगर हम कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं हम जिस हम जड़ों की बात कर रहे हैं कि हमें अपनी जड़ों को पहले पुख्ता करना होगा, तो हम उन युवाओं तक पहुंच जाएंगे, उन लोगों तक पहुंच जाएंगे अगर कुछ टीम्स का गठन कर और समय समय पर वो टीम्स जो हैं उन गांव गली कस्बों में पहुंचें और वहां शिक्षित करें समाज को कि किस प्रकार से तंबाकू का सेवन हानिकारक हो सकता है।
0: देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उन्होंने भी पीयर एजुकेशन प्रोग्राम चालू किया है किशोरों के लिए। हम लोगों ने कई ऐसी संस्थाएं हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं, जिन्होंने इस तरह का, तो नाडा इंडिया ने भी जो है इस तरह की कार्यक्रम किए हैं, जो कि नेशनल एक नापसी नाम से एक संस्था है जहां पर उनके जो एम्बेसडर्स हैं, जिसको कहते हैं कैंपस एम्बेसडर्स, उनको ट्रेन कर रहे हैं हम लोग। और उनको ट्रेन करके फिर ये नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स इन इंडिया है, यानी कि जो सोशल वर्क की पढ़ाई कर रहे हैं ऑलरेडी, उनको ही एक हेल्थ गुड हेल्थ एम्बेसडर बनाया जाए, पहली चीज़ तो ये। और दूसरा आता है पीयर एजुकेशन, यानी कि वो 5 लोगों को ट्रेन करेंगे। पहले हमने उनको ट्रेन किया, फिर वो 5 लोगों को ट्रेन करेंगे, और वो 5 को फिर वो अगले 5 को करेंगे, यानी कि एक ग्रुप बना तकरीबन 30 लोगों का। वो जो 30 लोगों का ग्रुप बना उसमें पीयर सपोर्टर, पीयर एजुकेटर एंड पीयर लीडर, तो यानी कि कहीं ना कहीं उनको एक नई पहचान मिलती है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो दोनों ही युवा हैं, चारों पांचों युवा हैं, एक दूसरे को सहारा मिल पाता है और एक क्लियर नॉर्म्स वहाँ सेट हो पाते हैं, जिसको हम कहते हैं हेल्दी कैंपस, कि क्या मेरा कैंपस जो है वो हेल्दी है। जैसे मैं अगर मैं कैंपस का मतलब केवल तम्बाकू केवल यूनिवर्सिटी से नहीं जुड़ा हुआ है, जहाँ भी बिल्डिंग में या जहाँ भी आप रह रहे हैं वो एक कैंपस है, उसको हम हेल्दी कैसे बनाएं, उसका एक सोशल ऑडिट खुद करें और डिस्कवर करें कि क्या ऐसी चीज़ें जो कि अनहेल्दी यहाँ पर हो रही है और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। और जब हम ये चेन रिएक्शन को डेवलप करते हैं युवाओं के बीच में, तो उसमें एक सहजता के साथ हम जुड़ पाते हैं।
1: जी जी, और जब हर व्यक्ति प्रयास करता है तो कहीं ना कहीं उस टीम का हिस्सा बन जाता है। जब हम भारत का नागरिक होने की जिम्मेदारी को आत्मसात करते हैं, जब हम मानते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं और भारत के जितने भी मुद्दे हैं, जहां पर भी हमारे देशवासियों की हमारी ज़रूरत है, तो हर व्यक्ति अगर अपनी जिम्मेदारी उठा लेगा तो शायद कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चेन, बहुत बड़ा पुल बन जाएगा। और
0: जिम्मेदारी का मीनिंग यहां पर हम लिखते हैं कि मैं आई एम कॉज इन द मैटर, मैं कारण हूं। तो मैं नागरिक हूं तो मैं कारण हूं, और अपने को स्वस्थ रखना ये मेरा पहला कर्तव्य है। और विकसित भारत तभी हो पाएगा जब मैं स्वयं विकसित हो पाऊंगा, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से।
1: जी, और जैसे कि सुनील वात्सायन जी ने आपसे स्वयं कहा कि कोई है जो आपकी मदद के लिए एकदम तैयार है, बस आपको फ़ोन घुमाना है। आप इस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से पहुँच सकते हैं, अपनी समस्या से निदान पा सकते हैं। 1-800-111-2356 कॉल कीजिए और अपनों का संरक्षण कीजिए, अपनों को बचाइए। सुनील वात्सायन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए और इतनी जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों ने जो श्रोता हैं उनका भी धन्यवाद।

102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। नमस्कार, मेरा नाम है स्वाति, लेकर आई हूं आप सभी के लिए प्रोग्राम हम कदम। बुधवार की दोपहर 2 से 3 बजे जब हम बात करते हैं आपके जिंदगी के सबसे खास कनेक्शन की, सबसे खास रिश्ते की, जी हां, आपके पार्टनर की बात जब हम करते हैं आपके हम कदम की। भाई, कई बार ऐसा होता है कि जिंदगी जो है हमेशा एक सी तो नहीं चलती है, और शादीशुदा जिंदगी में भी सबके अपने अपने जो है ना, अपनी अपनी मनस्थिति चलती है, अपने अपने मूड्स चलते हैं, और ये बिल्कुल ही बड़ी नेचुरल सी बात होती है कि जब हमारे पार्टनर का मूड ऑफ हो जाता है ना, तो पूरा का पूरा घर ही ऐसा लगता है जैसे साइलेंट मोड पर चला गया हो। लेकिन आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि लाइफ में जब भी आपका हमसफर थोड़ा सा लो फील कर रहा हो ना, तो वही मौका होता है आपका कि आप उस मौके को जो है ना टर्न अराउंड कर सकते हैं, और आप चाहें तो उनके पर्सनल सुपर हीरो बन सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि जिंदगी में जो है, खासकर शहरी जिंदगी में, इसकी अपनी एक अलग ही रफ्तार है। यहाँ पे डेडलाइंस का भी प्रेशर है, ट्रैफिक का स्ट्रेस है, और कभी कभी बिना किसी वजह के होने वाले मूड स्विंग्स भी हैं। हर बार कोई ज़रूरी नहीं कि कोई वजह ही हो, लेकिन जब ऐसा हो जाता है, जब आपका पार्टनर जो है वो लो मोड पे चला जाए, या साइलेंट मोड पे चला जाए, या फिर उसका मूड ऑफ हो जाए, और वो जो है ऐसे में क्या करना चाहिए, इससे में कैसे, मतलब इस तरह का जो माहौल बन जाता है, इस चीज़ से कैसे दो चार करें, क्योंकि हमेशा हर इंसान जो है ना, समय के साथ आप भले ही इक्विप हो जाए, लेकिन अगर आपकी इस यात्रा को बहुत समय नहीं हुआ है ना, तो कभी कभी समझ नहीं आता है कि इन चीज़ों से डील किया जाए तो कैसे किया जाए। वैसे कभी कभी सालों का एक्सपीरियंस भी जो है ना, वो काम नहीं आता है, नए लोगों की तो बात ही क्या करें। लेकिन हाँ, ये चीज़ें ऐसी होती हैं जब एक दूसरे का साथ निभाना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एक दूसरे के करीब होना या फिर उसे मी टाइम दे देना भी बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन कब साथ देना है, कब मी टाइम देना है, ये सब चीज़ें जो है ना, ये हमें समझनी पड़ती हैं। इसी बारे में करेंगे हम आज बात कि किस तरह से इस साइलेंट मूड से या फिर इस ऑफ मूड से जो है डील किया जाता है। 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, प्रोग्राम नाम है इसका हम कदम, मैं हूँ आपके साथ स्वाति, और मैं प्ले करने जा रही हूँ आप सभी के लिए अंकित तिवारी की बहुत ही अमेजिंग सी आवाज़ में एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना फ्रॉम द मूवी आशिकी 2। आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

निदा फाजली के लिरिक्स और एमएम क्रीम की बहुत ही अमेजिंग वाले म्यूजिक में अभी आपने सुनी लकी अली और सुनिधि चौहान की आवाजें। बहुत ही खूबसूरत गाना फ्रॉम द मूवी सुर मैंने प्ले किया आप सभी के लिए। एक ठहराव सा है इस गाने में, है ना। वाकई में रात की सुबह जो है ना वो हम चाहते हैं कि हमेशा होती रहे, और टनल के एंड पे ना हमेशा लाइट जो है ना उसको देखने की उम्मीद हमारे दिल में हमेशा रहती है। और ये उम्मीद ही तो है जो ज़िंदगी में हर वक्त हमें बेहतरी के लिए प्रेरित करती रहती है, और उम्मीद तो होनी भी चाहिए। फिर चाहे ये जो घनघोर घटाएं गिरकर आ रही हैं, ये जो शेडो है ना वो आपके मूड पर ही क्यों ना हो। एक बार आपको याद दिला दूं कि 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हम कदम, मेरी यानी स्वाति के साथ में। आज हम बात कर रहे हैं उन काले घेरों की, उन शेडोज की जो अक्सर आपके, अक्सर नहीं होना चाहिए एक्चुअली में, जो कभी कभी आपके पार्टनर के मूड पर छा जाते हैं। भाई अब क्या है ना, जिंदगी इतनी फास्ट पेस्ड हो गई है कि हम लोग इतने इंपेशेंट हो गए हैं कि हम ये चाहते हैं कि अगर मूड खराब हुआ भी है, अगर किसी वजह से हमें बुरा लगा भी है, तो वो भी ना बिल्कुल ऐसे ही चुटकी बजाते जो है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाए। और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जब हमारे स्पाउस का या हमारे हमसफर का जब मूड खराब होता है ना, तो हम सबसे पहले तो उन पर सवालों की बौछार कर देते हैं, क्या हुआ, किसने कहा, क्या किसी ने कुछ तुमको बोला है, तुमको ऐसा क्यों लग रहा है ना, वगैरह वगैरह बहुत सारे ऐसे सवाल जो है ना जब हम दागने शुरू कर देते हैं ना, तो जिसका मूड पहले से ऑफ है ना वो और ज्यादा इरिटेट हो जाता है। तो इस तरह के सवाल जो है ना इनको थोड़ा सा साइड में रखना चाहिए, और पेशेंस जो है ना यहाँ पे वही है जो आपकी दोस्त है। उसके अलावा और कुछ चीज़ मुझे नहीं लगता कितना ज़्यादा काम आ सकती है जितना कि पेशेंस आ सकता है। वो तो उन आपको ध्यान देने की ज़रूर जो है ना ज़रूरत होती है उस समय पे, लेकिन उस समय पे लगातार जो है ना इम्पेशेंट होकर सवालों की बौछार कर देंगे तो देखिए ऐसा ना हो कि मूड जो है ना एक तो वो भी और ज़्यादा ख़राब हो जाए, और ऊपर से वो सारा गुस्सा जो किसी और का है ना वो आपके ऊपर निकल जाए। देखिए स्पेस देना बहुत ज़रूरी होता है, और कभी कभी ना मूड ऐसे भी नहीं ख़राब होता, कोई वजह भी नहीं होती है, कभी इंसान सिर्फ शांत बैठना चाहता है। तो थोड़ा सा मी टाइम की तलाश अगर है तो आपके स्पाउस को वो ज़रूर मिलने चाहिए। साथ ही ये ज़रूरी है कि आप उन्हें मी टाइम तो दें, लेकिन साथ साथ ये एहसास ज़रूर रहे उन्हें कि जब भी उन्हें ज़रूरत है आप उनके आसपास ही हैं। एक सिंपल सी बात होती है ना, आई एम हियर फॉर यू ऑलवेज। चाहे तो टेक्स्ट करके भी बता सकते हैं, आजकल तो वो बड़ा अच्छा काम हो गया है कि हम लोग अपने मन की बात को अगर बोल नहीं पाते हैं ना तो लिख के ज़रूर बता देते हैं। और दूसरी बात, एक काम जो हम सभी करते हैं ना, वैसे फ़िलहाल मैं भी यही कर रही हूँ लेकिन मेरा काम है इसलिए मैं कर रही हूँ, और वो है एडवाइस देना। बेवजह की जो एडवाइस है ना जब तक मांगी ना जाए ना देनी नहीं चाहिए, खासकर ऐसे मौक़ों पे। और क्या है ना, जब इंसान सेंसिटिव हो, थोड़ा सा टची हो रहा हो, तो उस समय पे उसको एडवाइस कभी कभी बुरी लग जाती है। तो 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे आज हम ये जान रहे हैं कि जब आपके हम कदम का मूड थोड़ा ख़राब हो, या फिर वो जो है आप कहना चाहते हैं कि उनकी स्पिरिट्स थोड़ी सी लो हो रही हो, तो ऐसे में इन चीज़ों से कैसे डील किया जाता है, और कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जो मेरे पास हैं वो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ हमारे इस कार्यक्रम के जरिए। नाम है इसका हम कदम, सुन रहे हैं इसे आप सिर्फ और सिर्फ 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे। अगला गाना मैंने चुना है आप सभी के लिए मेट्रो इन दिनों से, आप ज़रूर सुनिए इसको, इट्स अ वंडरफुल सॉन्ग।

0: सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक
1: आकाशवाणी रेनबो।
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

इसी फील गुड के लिए तो हम लोग इतनी मेहनत करते हैं कि जिंदगी में हमेशा ये फील गुड फैक्टर जो है ना वो बना रहे। 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, प्रोग्राम चल रहा है हम कदम। मैं हूं स्वाति, आप सभी के साथ बात हो रही है कि जब आपका पार्टनर नॉट सो गुड फील कर रहा हो तो ऐसे में क्या करना चाहिए। भाई पहली बात जो मैंने आपको बताई तो वो तो आपको याद होगी कि आपको डिटेक्टिव नहीं बनना है, आपको सपोर्ट सिस्टम बनना है। सेकेंड बात जो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ वो है कि एक्टिव लिसनिंग कैसे की जाती है। भाई देखो ऐसा है ना, आजकल हम लोग इतने बिजी हैं और खासतौर पे हमारी स्क्रीन जो है ना वो हमारे को कई बार ना एक दूसरे से बातचीत करते हुए भी जब ये लगातार स्क्रीन पे ध्यान जाता रहता है ना तो दूसरे को ऐसा लगता है सामने वाले इंसान को कि आप उसकी बात पे ना ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट काम ये आ जाता है कि भाई आई कॉन्टैक्ट जो है ना वो हम अवॉइड करने लग गए हैं आजकल बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बात करते हुए। जनरली भी हम लोग ऐसा कर रहे हैं लेकिन ख़ासतौर पर जब आपके हम कदम की बात हो तो वहाँ पर आई कॉन्टैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई कॉन्टैक्ट हमेशा से ही कॉन्वर्सेशन का एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा जरिया रहा है, तो ऐसे में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उससे ये दिखाया जाता है कि इस समय आपका ध्यान पूरी तरह से उनके ऊपर है और आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो भी वो कह रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप उसकी परवाह करते हैं। और साथ ही भाई टेक्स्टिंग करते करते हम लोगों की बातें भी ना कहने के तरीके भी बड़े ना उसी तरह से मोनोलॉग जैसे हो गए, सिंगल वर्ड में हम लोग अक्सर जो है जवाब देना शुरू हो गए हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना इसको थोड़ा सा साइड में रखना पड़ता है। कम्युनिकेशन को कम्युनिकेशन की तरह कीजिए, बातों को वैलिडेट कीजिए। और हाँ, यहाँ पे ना ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी समय उनकी गलती बतानी है, थोड़ा सा अवॉइड कीजिए क्योंकि जब आप सपोर्ट सिस्टम बन रहे हैं तो ऐसे में आपको अगर उनकी गलती दिखानी भी है तो उसके लिए थोड़ा सा वेट किया जा सकता है। भाई आई कैन अंडरस्टैंड इज मच बेटर देन, तो भाई गलती तो तुम्हारी थी ना, तो आप समझ सकते हैं ना बातें किस तरह से कही जाती हैं। भाई ऑब्वियसली आपके रिलेशनशिप में किस तरह की बातें कारगर होती हैं आप लोग बेहतर जानते हैं, लेकिन अगर एक जनरल हिसाब से बात की जाए ना तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़र्क जो है वो डालती हैं। और साथ ही साथ जज करना भी तो बड़ा ज़रूरी हो जाता है ना हम लोगों के लिए। मतलब हम लोग इतनी चुटकियों में रिजल्ट चाहते हैं ना कि हम लोग फ़ौरन जो है निष्कर्ष निकाल के उन्हें बताते हैं भाई तुम्हारी गलती थी तो तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए वगैरह वगैरह इस तरह की बातें कर देते हैं, लेकिन सामने वाले को कितना हर्ट करती है ना उसका अंदाज़ा ना बाद में होता है। और फिर बाद में लगता है इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। जब मैं आपसे अच्छे सेंटेंसेस को इस्तेमाल करने की बात कर रही हूँ, आपसे एक अंडरस्टैंडिंग वाले सेंटेंसेस को इस्तेमाल करने की बात कर रही हूँ, तो इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि जब हम गलती बताना शुरू करते हैं या अपना ओपिनियन देना शुरू कर देते हैं ना तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि आप उन्हें जज कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। 102.6 आकाशवाणी रेनबो, किस तरह से अगर आपके सुनहरे चमकीले दिन में जो है ये कुछ शेडोज़ आ जाती हैं, ये कुछ ऐसा समय आ जाता है जब धूप थोड़ी देर के लिए गायब हो जाए और मूड जो है वो ऑफ हो जाए, तो अपने पार्टनर के मूड को बेहतर करने का क्या तरीका हो सकता है, ऐसी ही कुछ चीज़ों के ऊपर हम बात कर रहे हैं हमारे आज के इस प्रोग्राम में। नाम है इसका हम कदम, सुन रहे हैं इसे आप 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे। और अगला जो मैं आपको सॉन्ग सुनवाने जा रही हूँ फ्रॉम द मूवी सावरिया शान की आवाज़ में, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरत सा गाना है। आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।
2: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप प्रोग्राम हम कदम जी, जहां पे हम करते हैं आपके जिंदगी के सबसे क्लोज कनेक्शंस की बात। और इस प्रोग्राम को सुनते हैं आप हर बुधवार दोपहर 2 से 3 बजे के बीच में, और मैं हूं स्वाति आपके साथ। और आज हम बात कर रहे थे कि किस तरह से ऑफ मूड को जो है ना गायब किया जाए और उसके साथ साथ जिंदगी की जो धूप है और जो चमकीले दिन है उन्हें कैसे वापस लाया जाए। हमने ये बात की कि इस तरह से कुछ प्रैक्टिकल टिप्स को अपना के जो है आप अपने पार्टनर को सपोर्ट भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ उनके ऑफ मूड को जो है ना बेहतर करने में हेल्प भी कर सकते हैं। हालांकि इसके बहुत से तरीके होते हैं, अपने अपने पर्सनल जो होते हैं ना वो तो होते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो कुछ जनरल होते हैं ना उसके बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ। लेकिन हाँ, जब ये बात आपके हाथ से बाहर निकल जाए तब ज़रूरत पड़ती है प्रोफेशनल हेल्प की। जी हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ज़िंदगी में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया है, ज़िंदगी की डिमांड्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं, कभी कभी कोई पार्टनर जो है ना लड़खड़ा जाता है, वो उसे पूरा नहीं कर पाता है। ऐसे में केवल आपका कंधा जो है ना या आपका सपोर्ट काफ़ी नहीं रहता है। ऐसे में वो सिर्फ एक बैड डे नहीं होता, वो वीकेंड से शुरुआत हो जाती है या फिर वीक्स से शुरुआत होकर मंथ्स तक जा सकता है, लेकिन इसको रोका जा सकता है। इसके लिए पहचानना बहुत ज़रूरी है। और ये ऑब्वियसली जो आप ये

अगर आपका पार्टनर उसका मूड अगर इस तरीके से खराब होता है तो उसको पहचानने की और उसको सही समय पे मदद दिलाने की जिम्मेदारी आप ही के ऊपर आती है, और थेरेपिस्ट या काउंसलर से बात करना ऐसे में बहुत फ़ायदा करता है। बाकी ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि आप लोग एक टीम है, ऐसा नहीं है कि किसी एक को जो है उसको आप दुखी छोड़ सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में आप मस्त रह सकते हैं, क्योंकि घर जो है वो दोनों से मिलकर बनता है। ये यात्रा जो है ये दोनों जब तक कदम से कदम मिलाकर नहीं चलते तब तक पूरी नहीं कर सकते हैं, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, एक दूसरे का हाथ थाम कर ही आगे बढ़ना होता है। जब आपका पार्टनर उदास हो तो आपको पैनिक नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी समझदारी, ढेर सारा प्यार और थोड़ी सी भी अप्रोच, थोड़ा सा पॉजिटिव आउटलुक कई बार बहुत बड़े बड़े काम जो है ना वो कर सकता है। मैं आपको बस यही कहना चाहूँगी कि आजकल जो है ना मूड स्विंग्स बहुत आम बात हो चुकी हैं, और मूड ख़राब होना ये तो कई बार ऐसा होता है कि रोज़ाना की ही बात है, लेकिन कब ये एक बैड डे है और कब ये जो है ना एक बैड अप्रोच में बदल चुका है, ये सब चीज़ें जो है ना बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत हो गई है। और ख़ासतौर पर जब गर्मी का मौसम इस तरह से पूरी अपने तीखेपन के साथ आपको परेशान कर रहा हो ना, तो ऐसे में और बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है कि अपनी एनर्जी को बनाए रखने के लिए अपनी मनस्थिति जो है, आपकी जो इमोशनल हेल्थ है, आपका इमोशनल वेलबींग है वो अच्छा रहे। वैसे हमारे कई प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो कि आपके हेल्थ को जो है एड्रेस करते हैं, और केवल फिजिकल हेल्थ को नहीं आपकी मेंटल हेल्थ को भी एड्रेस करते हैं। जैसे हमारा अगला प्रोग्राम जो कि आपकी सेहत के साथ जुड़ा है और उसके समाधान आपके लिए प्रस्तुत करता है, आज उसमें जिस विषय पर बात होगी, यानी कि रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम की बात कर रही हूँ मैं, आज जिस विषय के ऊपर बात होगी वो है फैमिलीज इनइक्वालिटीज एंड चाइल्ड वेलबींग। और इसमें जो एक्सपर्ट मौजूद रहेंगे वो हैं डॉक्टर MS तोमर जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, साथ ही किया चैटर्जी जो कि न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामर हैं। ये प्रोग्राम अगला जो कि आप सुनेंगे 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे 3 से 4 बजे के बीच में, ये आपके लिए लेकर आएगा इस तरह की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ आजकल हमारी हेल्थ से जुड़ गई हैं, हमारी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ हमारी मेंटल हेल्थ के साथ में जो जुड़ गई हैं, ये सभी कॉम्प्लेक्सिटीज़ से दो चार होना और इसके साथ साथ जितनी भी आपकी सेहत से जुड़ी समस्याएँ हैं उन सभी को एक एक करके जो है ना उससे जुड़ी जानकारी और समाधान प्रस्तुत करना, ये करता है हमारा ये प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर, जिसे आप सुनेंगे 3 से 4 बजे के बीच में, यानी कि अगला प्रोग्राम 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे। फिलहाल आज का हम कदम था बस यहीं तक, मेरी यात्रा का फिलहाल यहाँ पर होता है अंत, और बुधवार दोपहर 2 से 3 बजे का ये समय जो जुड़ा है आपकी ज़िंदगी के सबसे क्लोज कनेक्शंस के साथ में, उम्मीद करती हूँ कि आज का ये प्रोग्राम भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा, साथ ही मेरी प्लेलिस्ट, एंड ऑब्वियसली मैं आखिरी गाना आप सभी के लिए जो प्ले कर रही हूँ ना, वन ऑफ माय फेवरेट्स, सूरज जगन और जोई बरुआ की आवाज़ में, फ्रॉम द मूवी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो। स्वाति को दीजिए इजाज़त।

0: Well, listeners, mo gan first caller ay ase to tan per phone ko ase ba tay na sa wo. Hello.
1: Atad.
0: Hello.
1: मेरा नाम तुरंग वर्मा है और मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान गांव का नाम अंतमल बुगला से बात कर रहा हूँ सर।
0: ओके वेलकम टू द शो, आप कैसे हो?
1: जी आज फिल्म का नाम रहेगा मुझसे शादी करोगी।
0: मुझे शादी करोगी, अच्छा क्या गीत है? हेलो
1: उसमें कौन कौन से गाने करो उसमें?
0: मुझे शादी करो की के मूवी में। हेलो हेलो
1: हाँ सर गाने बताओ।
0: अच्छा क्या गाना?
1: हाँ सर उसमें भी कौन कौन से गाने हैं?
0: मुझे शादी करोगी। हेलो हेलो हेलो
1: हाँ जी सर आई आवाज।
0: अजय सोनी है जीने की
1: नहीं मुझसे शादी करोगे उसमें गाने?
0: गाना है अजय सोनी है लाल पाता लाहो
1: इसमें गाने को बोला। हाँ ये आधा सोनी है आधा सोनी।
0: ओके ओके ओके तो डेडिकेशन है कि नहीं?
1: आधा सोनी
0: हाँ डेडिकेशन। हेलो
1: सबसे पहले तो आप है।
0: ओके थैंक यू।
1: और मेरा दोस्त है राकेश है भगवान सिंह परवान भी है अभिनव भी है पुरुषोत्तम भैया भी है गोल्डी भाई है अमर साहु है जितने कोई बार आकाशमान कोई ना पे अमर है विमल है वो तमाम छोटा।
0: ओके तो शुक्रिया फॉर कॉलिंग और सुनकर एंजॉय करिए आपके गाना अजय सोनी है फ्रॉम द मूवी।

0: हिमाचल प्रदेश शिमला से।
1: वाह कैसा कैसे है?
0: जी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे है। अभी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और हम ले रहे ठंडी ठंडी मौसम का।
1: मौसम बहुत बढ़िया ना?
0: जी जी बहुत बढ़िया मौसम है।
1: अच्छा तो आज क्या गीत सुनना चाहोगे आप?
0: सड़क मूवी का, सड़क मूवी मिलेगी?
1: सड़क
0: सड़क
1: नहीं नहीं गीत का नाम बोलो। गीत का,
0: गीत का नाम है जब जब प्यार पे पहरा हुआ है।
1: जब जब प्यार। अच्छा
0: ये सड़क मूवी का है
1: सर। जब जब प्यार, ओके। जब जब प्यार पे पहरा हुआ है।
0: पहरा हुआ है? हाँ जी जी।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, हमारे पास है तो डेडिकेशन है कि नहीं?
0: बिल्कुल बिल्कुल है, है बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो
0: सबसे पहले तो ये गाना आपको डेडिकेट रहेगा।
1: थैंक यू।
0: तो पूरण वर्मा है, अविनाश तेली है, भगवान सिंह परमार है, रमेश प्रजापति है, विमल बसमा तारे हैं, अंकित बसमा तारे और अमल बसमा तारे हैं, और राम नरेश कंजर और तमाम सुनने वाले श्रोता अविनाश तेली सभी के साथ ये गाना सुनना चाहता हूँ और आपके लिए खास ये गाना डेडिकेट रहेगा।
1: बहुत शुक्रिया। और आप सुनते रहो आकाशवाणी फ्रॉम चक्रपान 103 मेगाहर्ट्ज पर। ओके
0: ओके धन्यवाद।
1: थैंक यू फॉर कॉलिंग। बाय बाय
0: बाय बाय।
1: ओके लिसनर्स, विल एंजॉय दिस ट्रैक फ्रॉम द मूवी सड़क। गाना नाम से जब जब प्यार पे पहरा हुआ है।

0: Hi listeners, the next caller la call is it? Hello?
1: Hello,
0: Sarji,
1: Namaskar.
0: Good evening, kaise ho?
1: Good evening, sir, good evening. Giram Hirapur, Jila Sihor, Madhya Pradesh se Bhagwan Singh Parmar bol raha hu, sir.
0: Ji, Bhagwan Singh, kaise ho?
1: अच्छे सर, बहुत मस्त हैं, गर्मी के आनंद ले रहे हैं सर।
0: हाँ, बहुत बहुत अच्छे से ले रहे हो ना गर्म
1: जी। बहुत ज्यादा गर्मी है सर, तो आप आनंद नहीं ले पाएंगे गर्मी का भी सर।
0: अच्छा, तो आज क्या गीत सुनने चाहूंगा
1: सर? जी सर, फिल्म का नाम है अनाड़ी नंबर वन और गाने के बोल हैं पागल मुझे बना गया है सिट्टी बजा के।
0: अच्छा, पागल अनाड़ी नंबर वन।
1: हाँ, अनाड़ी नंबर वन गाने के बोले पागल मुझे बना गया है सिट्टी बजा के। और ये नहीं मिले सर तो जुल्मी फिल्म का सुना दीजिएगा, तेरी बदमाशियाँ और मेरी कमजोरियाँ।
0: अनाड़ी नंबर वन, ओके। अनाड़ी का मूवी तो नहीं है तो
1: जुल्मी फिल्म का तेरी बदमाशियाँ और मेरी कमजोरियाँ।
0: तेरे बदमाशियाँ, अच्छा,
1: जुल्मी है फिल्म का नाम।
0: जुल्मी ओके।
1: और नहीं मिले तो सर सिर्फ तुमका सुना देना, पहली पहली बार मोहब्बत की है।
0: गीत का नाम है वो पहला पहला प्यार।
1: हाँ, सिर्फ तुम फिल्म में से।
0: पहला प्यार प्यार है आपके है कौन?
1: ये चलो सर, हम आपके है कौन के सुना दीजिए, क्योंकि वो आपको मिल नहीं रहा, मतलब फिल्म नहीं मिल रहा है ना।
0: हाँ हाँ,
1: इसलिए तो सर वो हम आपके कौन सा ही सुना दीजिए।
0: चलो, डेडिकेशन है कि नहीं?
1: हाँ सर है ना, हमारे मित्र हैं प्रेम सिंह सिसोदिया जी हैं, जगदीश राय गर्गी जी सुन रहे हैं आपको, सुनील झा जी सुन रहे हैं।
0: अच्छा।
1: और दिलीप पाहुजा जी सुन रहे हैं, अमल भस्मचारी, विमल भस्मचारी, रमेश प्रजापति जी, पूरन वर्मा, राकेश जी शिमला से, आशुतोष जी, अविनाश जी, प्रेम सिंह सिसोदिया जी, केसरी सिंह राजपूत, रामबाबु शर्मा, मंगीलाल चंदेल जी, भाई कौन मुंडा जी, गंगाधर सावनकर जी, इन सबके साथ सुनना चाहेंगे सर, आपको भी डेडिकेट रहेगा।
0: अच्छा, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए और डेडिकेशन के लिए।

0: प्लस एंड
1: ओके तो सुनकर ट्यूनिंग करते रहिए फिल्टर दुकान पे ओके
0: जी सर बहुत अच्छा लगता है सर आपसे कार्यक्रम में जुड़ने के बाद
1: हम भी बहुत अच्छी लगती है आपकी बात आपको बात करने के लिए
0: जी जी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर
1: ओके बाय
0: बाय सर
1: Yes, this is that was Bhagwan Singh, and yes, he wants to listen to the track called "Pehla Pyar." Pyar from the movie "Hum Aapke Hain Kaun," and yes, something on phone in program. They participate group or something on phone number 0370-224-3036. They something on a dedication or request. Take a later number then dial inquiry. It is a gana hunibo pehla pyar.

0: Listeners, ganado de envase, le voy a catequinar al next caller con el señor. Hello, good evening.
1: Good evening, sir.
0: Hello, good evening. कौन बात कर रही है?
1: मैं आशुतोष त्रिपुरा से बोल रहा हूँ.
0: आशुतोष भाई, कैसे हो?
1: बढ़िया हूँ सर. तो आपका साथ दूसरी बार मेरा बात हो रहा है.
0: दूसरी बार?
1: जी जी, पहले कुछ दिन पहले हुआ था आपसे बात.
0: मेरा नाम याद है?
1: नाम भूल गया सर. मेरे पास दूसरा भी लगा है, भूल गया हूँ.
0: कोई बात नहीं. कैसे सब? बढ़िया ना हालचाल?
1: हाँ बढ़िया तो हूँ, लेकिन मौसम ठीक नहीं है. लगातार लगभग एक हफ्ता से

0: बारिश चल रहा है।
1: उधर पे
0: घर से निकल नहीं पा रहा हूँ।
1: बहुत भारी बारिश या थोड़ा थोड़ा?
0: भारी बारिश।
1: अच्छा,
0: नदी और नाले पूरा भर गया है।
1: अच्छा,
0: लेकिन टेम्परेचर कम है।
1: तो वो तो बात एक बात सही है ना, आई मीन टेम्परेचर तो थोड़ा ठंडा है ना।
0: हाँ, गर्मी से काफी राहत मिला है।
1: तो आप आज इवनिंग क्या सुनने के लिए पसंद करेंगे गाना?
0: तो सर जी, आज मुझे सुना दीजिए, 1972 में रिलीज हुआ फिल्म का नाम है अमर प्रेम।
1: अमर प्रेम प्रेम 1972। अच्छा अच्छा, गाना का गीत का नाम क्या है?
0: चिंगारी कई धड़के, किशोर दाने का।
1: हाँ, किशोर दा की आवाज में। अच्छा,
0: और इस गाने को लिखा है मशहूर लिरिक्स आनंद बख्शी जी ने।
1: हाँ जी हाँ जी, और म्यूजिक दिया और आरडी बर्मन,
0: आरडी बर्मन जी ने बढ़िया सुर दिया इस गाने में, है ना।
1: हाँ, और एक्टर्स थे राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर ना।
0: हाँ, राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर जी ने एक्टिंग किया।
1: अच्छा, अब देखे ये मूवी?
0: कितनी बार देखा हूँ सर, इस फिल्म का स्टोरी बहुत बढ़िया स्टोरी है।
1: थोड़ा थोड़ा बताइए लिसनर्स को।
0: ये तो लगभग मैं देखा 40 साल पहले का बात है, अभी याद नहीं, पूरा याद नहीं, लेकिन स्टोरी अच्छा था ये याद है।
1: अच्छा, कोई बात नहीं। और ये बढ़िया सा गाना, कोई डेडिकेशन है कि नहीं आपके?
0: बिल्कुल डेडिकेशन है।
1: चलो,
0: तो सर पहले आपको सुनाना चाहता हूँ।
1: बहुत थैंक यू।
0: और राजस्थान से पूरन वर्मा और शिमला से भैया।
1: अच्छा,
0: उनका तो फोन लग गया है, भगवान सिंह परमार जी।
1: अच्छा हाँ, लग गया उसका खोल।
0: और रमेश प्रजापति जी, प्रेम सिंह सिसोदिया जी, संदीप रामजेत जी और मंगीलाल जी, राम बाबू शर्मा, केसरी सिंह राजपूत और त्रिपुरा से अविनाश तेली, मेरा प्यारा छोटा भैया।
1: अच्छा, वो भी सुनते
0: हैं। मेरा धर्म पत्नी संगीता डबला और नेटवर्क के सारे श्रोताओं को लेकर सुनना है।
1: अच्छा, तो वो भी सुनती है एफएम ट्रगोपैन?
0: हाँ हाँ, एक दो दिन लगाया था फोन को हिमा में।
1: अच्छा, बहुत बढ़िया है। तो
0: हाँ, और हमारा इंडिया का हर एक स्टेशन में लगाता है।
1: अच्छा,
0: ये मुंबई में, लखनऊ में और जम्मू कश्मीर और भोपाल में और ईटानगर, गैंगटॉक।
1: अच्छा, पूरा इंडिया में लिसनर है ना?
0: हाँ, पूरा इंडिया में मैं भी घूमता हूँ, मेरा धर्म पत्नी भी घूमता है
1: और आवाज भी घूमता है। अच्छा, तो आशुतोष जी, आपके बात करने बहुत अच्छा लगा,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ओके, सुनकर एंजॉय करिए आपके गाना अमर प्रेम की मूवी से। ओके
0: ओके
1: रैम, बाय बाय। Well, listeners, that was Ashutosh and Tai Hunigli Munjasi from the movie Amar Prem, aro gana nam se chingari koi bharke. And yes, we have maybe adha gana disina bachki na se, to edo gana bachite apni gan call kurle munjasi le, number 0370-224-30-36 de fatafat dial kurbe, aro dedication aro request agile, mugye kubi dibe, pare tak movie bachai dibo.

0: Yes, listeners, let's see who the next caller is. Hello, good evening.
1: Good evening, sir.
0: Hey, कौन बोल रही है इतना अच्छी आवाज से?
1: जी मैं ग्रामीण मेरे जिला से तारा।
0: अच्छा, आप क्लास कितना में, कितना क्लास में है आप?
1: जी सर, जबलपुर से शास्त्रीय संगीत सीख रही हूँ।
0: अच्छा, तो आज कैसे सब, आप कैसे हो आज?
1: सर आपसे बात हुई तो अच्छी हो गई, और आप गर्मी के मौसम में आप कार्यक्रम कर रहे तो मन को एक दोस्त बहुत अच्छा है सर, आप कार्यक्रम पेश कर रहे हैं।
0: अच्छा, बहुत धन्यवाद, आप सुनकर बहुत अच्छा लगा। और आज क्या गीत सुनना चाहूंगी आप?
1: जी सर, का नाम है आग ले लग जा।
0: मूवी का नाम है
1: आग ले लग जा।
0: आग गले लग जा। ओ अच्छा अच्छा, और गाने का नाम है?
1: सर मैं गाकर सुना देती थी, सिंगर है तो मुझे गाना बहुत जान, मुझे गाकर सुनाना अच्छा लगता है तो मैं गाकर सुनाती हूँ।
0: चलो चलो।
1: जी, तेरा मुझसे जो पहले सुनाता कोई ये नहीं देखता कोई, तेरा मुझसे जो पहले कनाता कोई ये नहीं देखता कोई, जानी तो हो या जाने हो, मनी तो हो या मनी हो।
0: बहुत बढ़िया,
1: थैंक यू। और सर मैं गोल टिकट करना चाहती हूँ।
0: अच्छा,
1: जैसे मेरे पास है और मेरे पापा है और अविनाश शैली जी है और वत्माचार्य जी है और हमारे सभी श्रोताओं को डेडिकेट रहेगा।
0: मूवी का नाम था आ गले लग जा ना?
1: जी सर जी।
0: आ गले लग जा, वेट मैं ढूंढ रही हूँ, लेकिन वेट आ गले। तो आप अभी क्या कर रही हो?
1: जी सर कुछ नहीं, आपका कार्यक्रम सुन रहे और शास्त्रीय संगीत में अब मैं पढ़ाई देकर शास्त्रीय संगीत सीख रही हूँ।
0: अच्छा, बहुत बढ़िया। और गाना नाम, गाना का गीत का नाम था तेरा मुझसे
1: या? तेरा मुझसे
0: था। अच्छा, तो आप बहुत अच्छी सी गाना बहुत अच्छी सी गाना
1: गाती हो।
0: हाँ गाती

0: मम्मी सपोर्ट करेंगे, मुझे पता है आपको हिंदी नहीं आती हम सपोर्ट बताओ का काम ही है कि आपको सपोर्ट करना। जैसे आप हमें हिंदी में बात करते हैं, हमारी भी यही प्रयास रहता है कि आपको किस तरह से समझ आए हिंदी।
1: बहुत थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। अच्छा तो आप गाना सुनकर एंजॉय करिए तेरा मुझसे फ्रॉम द मूवी आ गले लग जा। ओके
0: ओके बाय बाय।
1: ओके थैंक यू बाय बाय। Alright, listeners, that was very sweet, right? And she sang very beautifully, I would say. So yes, thank you. And you will be listening to the track Tera Mujhse. Aro apni gaan phone in the participate kule mujhe chilo 0370224303 6 te dial kuri kina request aro dedicate kuri to be.

0: सुनकर बहुत दुख है, लेकिन यू नो कैसे बोलेगी,
1: हाँ सर जी, वो
0: रात में तो थोड़ा थम होता है ना रात में, और ऐसे में
1: जी जी जी रात के ठंड हो जाता है और सुबह से पढ़ने लगती है, सुबह 7 बजे से।
0: अच्छा, तो आज क्या गीत बजा देंगे आपके लिए?
1: अरे गीत वो मिल जाएगा, आज के आर्जन का संवादना और ये कलैया।
0: मूवी का नाम क्या है?
1: अरे आज का आर्जन, आज का अर्जुन है,
0: आज का अर्जुन।
1: हाँ गोरी कलैया, तो मुझे हरी हरी
0: की मूवी है। 1990 का मूवी है ना?
1: हाँ जी जी, हाँ 1990 का मूवी है जी जी।
0: हाँ आज का अर्जुन। ओके, गाना का नाम क्या है?
1: अरे किसका नाम, मूवी का नाम?
0: नहीं नहीं, गाना गाना गाना गाने
1: गाना ये गोरी कलैया
0: गोरी है कलियां, और लता मंगेशकर और समीर कुमार की आवाज में।
1: जी जी जी जी जी जी,
0: चलो अब ये मूवी देख, हैव यू वॉच द मूवी? अब ओके, अच्छा डेडिकेशन से कि नहीं? डेडिकेशन
1: जी, डेडिकेशन रहेगा तेरा सर जी, आपको रहेगा।
0: ओके थैंक यू। और
1: माईलाल चंदेल जी है,
0: अच्छा
1: अरुण कुमार भट्टाचार्य जी है, अविनाश जी है, और पूरन जी है, और गोल्डी है, और रमेश प्रजापति है, और गजराज जी है, और जितने भी मुझे जितने भी टिकट आएगा सर जी।
0: अच्छा, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप कॉल करने के लिए,
1: धन्यवाद सर जी।
0: ओके तो ओके, सुनकर सुनकर एंजॉय करिए
1: जी, लेकिन यही है छोटा लोग तो जल्दी ना लगाए, 2 महीने का 1 महीने का अंतराल से लगाए सर जी।
0: ओके तो सुनते रहिए एफएम चागोपान। ओके
1: अब जाकर लगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई मई में जाकर लगा मेरा।
0: अच्छा तो ट्राई कीजिए, कीप ट्राइंग।
1: तो सबसे मैं यही कहता हूँ, सबसे तो छोटा ने मौका दिया करो, आर हो जी ना मत लगाओ, आर सबसे मैं यही कहूँ।
0: अच्छा तो आप, मैं आपकी गाना बजा देंगे गोरी है कलियां।
1: और आपका क्या नाम है सर जी? मैं चंदन है, उनसे बात होगी, आपका क्या नाम है सर जी?
0: मेरा नाम है TIM थिम।
1: हाँ सर, वो दूसरे सर जी होते हैं, उनसे होती है बात, आप तो पहली बार हो रही।
0: कोई बात
1: जी जी, और भी छोटा नाम चाहिए संवाद होगा रखे, ठीक है सर जी, और भी छोटा नाम चाहिए।
0: हाँ बात तो अच्छा, तो आपके गाना बजा देंगे आज के अर्जुन से, आप सुनकर एंजॉय करिए। ओके
1: जी जी जी, धन्यवाद।
0: ओके रेन, बाय बाय
1: बाय।
0: Yes, listeners, we are listening to Gori Hai Kaliyan from the movie Aaj Ka Arjun. So, it is one show. 7:10 tak to patapat apni gan phone inquiry. Number is 0370224 3036.

0: भोला भाला भीमा बम भोले का पुजारी किसी नारी से नजर न मिलाए। नारी बड़ी प्यारी पर दिल की बीमारी काहे रोग कोई दिल को लगाए।
1: गोरी है कला

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। योजना पर 25,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। कहा, यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बढ़ावा देती है। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। और भारत 2027 एशियाई रिले और 2028 एशियाई इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक

0: वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहाँ से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुँचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रेमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश के प्रत्येक जरूरतमंद लोगों को समय पर अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में इस प्रणाली को और अधिक आधुनिक तथा प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक PDS योजना के विस्तार की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने SIR को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी

0: का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था।
1: असम में समान नागरिक संहिता विधेयक का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानूनी व्यवस्था स्थापित करना है। संवैधानिक संरक्षण और पारंपरिक रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने के लिए अनुसूचित जनजातियों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। वहीं विभिन्न धर्मों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक समान कानूनी ढांचा लागू करने का प्रावधान किया गया है। विवाह संबंधी प्रावधानों के तहत विधेयक में एक विवाह की व्यवस्था अनिवार्य की गई है तथा वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और वधु की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता पारित होने पर असम की जनता को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि समान नागरिक संहिता भाजपा का स्थापना दिवस से ही संकल्प रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: go.in पर। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो से तीन दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी के और लू के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। एक रिपोर्ट।
1: आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ मौजूदा लू की स्थिति पर चर्चा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उन विशेष कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपने अपने कार्य क्षेत्र में उठा सकते हैं।
2: प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में सुविधा पहुंचाने की किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा हुई।
1: आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर विक्रम ने लोगों को लू से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना और ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवन करना और दिन के समय तपती धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उधर राजस्थान में भी राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: दिन और रात के बढ़ते तापमान से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में जनजीवन पर असर पड़ा है। दिन के समय गांवों और शहरों में सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही सीमित हो गई है। विभिन्न जिलों में प्रशासन की ओर से गर्मी से निपटने के लिए कई स्तरों पर इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न संस्थाएं भी ठंडे पेय का वितरण कर लोगों को राहत पहुंचाने के जतन में जुटी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करने की भी अपील की है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज सभी न्यायाधीशों से अपील की कि वे भीषण गर्मी को देखते हुए मामलों की सुनवाई ऑनलाइन करें। न्यायालय ने कहा कि वह इस संबंध में न्यायिक निर्देश जारी नहीं कर सकता। न्यायालय दिल्ली में बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए सभी अदालतों में ऑनलाइन कार्यवाही करने के निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सरकार द्वारा पूर्व प्रभावी 28% GST को बरकरार रखते हुए इसे वैध बताया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म केवल मध्यस्थ नहीं है बल्कि उन्हें आपूर्तिकर्ता माना जाना चाहिए और उन पर वस्तु तथा सेवा कर GST लागू होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upssconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश की उन्नति के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास बेहद आवश्यक है। आज गांगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने शिक्षा को सशक्तिकरण का मार्ग बताया और विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने विचारों, नवाचारों और आपसी विश्वास के जरिए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। और खेलों में म्यूनिक में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 43 हिट लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने जूनियर और सीनियर दोनों वर्ग में विश्व रिकॉर्ड कायम किया। फाइनल में ईशा ने पूर्व विश्व चैंपियन मिरोस्लावा मिंचेवा और कोरिया की शीर्ष खिलाड़ी जीन यांग को हराकर पहला स्थान हासिल किया। डेरिन वेनेकैंप दूसरे और मिरोस्लावा मिंचेवा तीसरे स्थान पर रहीं। उधर न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 4 विकेट पर 211 रन बना लिए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने 97 रन की पारी खेली। भारत ने एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 और एशियन रिले 2028 की मेजबानी के अधिकार हासिल कर लिए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष आदिल सुमरेवाला ने आज इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 का आयोजन भुवनेश्वर में जबकि चंडीगढ़ एशियन रिले 2028 की मेजबानी करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक PDS योजना के विस्तार को मंजूरी दी। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, UCC लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। और भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Centre approves extension of Sarthak PDS scheme to modernise public distribution system with outlay of over 25,500 crore rupees. Severe heat wave conditions to continue over central and northwest India during next 2 to 3 days. Prime Minister Narendra Modi urges citizens to take care of vulnerable people amid soaring mercury. Supreme Court upholds legality of Election Commission's SIR drive, says exercise advances free and fair elections. Assam Assembly passes Uniform Civil Code Bill, becoming third state in the country to adopt the legislation. Indian shooter Isha Singh breaks world record in women's 25-meter pistol event, clinching gold at ISSF World Cup in Munich. And India to host 2027 Asian Relays and 2028 Asian Indoor Championships. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, today approved the continuation of the scheme to modernize the public distribution system, PDS, including ration transport, dealer support and technology upgrades till March 2031. The umbrella scheme, called Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling Income with Automation in PDS, Sarthak PDS, has been cleared in the 16th Finance Commission cycle award period with an outlay of 25,530 crore rupees as central share. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav made the announcement regarding the cabinet's decision while briefing media in New Delhi.
3: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं।
4: थ्री मेजर रिफॉर्म्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोग्राम टुडे। फर्स्ट, द गवर्नमेंट विल सपोर्ट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर्ड इन मूविंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम लार्ज FCI वेयरहाउसेस इन द स्टेट्स टू

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम से आनांक, आरबीआई इत्यादि के नाम से आनांक, आरबीआई इत्यादि के नाम से आनांक, आरबीआई इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: आरबीआई कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Those who build the nation with their hard work and pride, ESIC stands strong right by their side. In moments of joy or times of despair, ESIC is always there.
7: Since 1952, ESIC has grown into one of the strongest pillars of support for India's workforce. Nearly 40 million insured workers and over 150 million beneficiaries reaching every state, every family. Cashless medical care, wait support during illness and complete protection from maternity to unemployment.
6: With new labor codes, every worker can now rely on simpler, stronger and more modern social security. Over 165 hospitals, seamless online services and a legacy built on trust.
7: ESIC, 75 years of standing by every worker, every single day.
8: ESIC, chinta se mukti.
9: Hello, good evening, my dear friends, my lovely and awesome listeners. Apni khan sabke program mein swagat kuri ase. Agishwani Kuhima FM Chagaban 103 MHz te apni khan laga host aru dost Arjitam Jan lagude. Well, my dear friends, ami kani itya ekta beautiful selection from the magical 1980s Bollywood era laga huni abo. Songs filled with romance, melody, emotion and memories that never grow old. So, my dear friends, RJ's Choice in the Film Songs program. Itiyabra logina 10 baje ta khuni hobo to pehla geet jate ani diye se Sagar film ra Lata Mangeshkar aru Kishore Kumar awaste. Music this Aarti Parman, lyrics Javed Akhtar. Khuni kina enjoy grubi, this romantic duet remains one of the most loved songs of the 80s.